एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई सन 2026। स्टूडियो घड़ी में समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का

0: पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये 679 मिलियन डॉलर था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
2: ये है विविध भारती।

चिंतन। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। ये विचार महात्मा गांधी के हैं। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 250। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग का भाग 3। कलाकार गायिका विदुषी आरती अंकलीकर, प्रस्तुति रूपाली रूपक। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 और 7:30 पर होगा कार्यक्रम हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8 और 8:15 और दिन में 2 सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी। आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक में। आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार मदन मोहन पर। आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम को दोबारा सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम का

होगा दिन में 11 बजे और 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दिन में 1 बजे तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के साथ और जुड़ जाइए फेसबुक पर कमेंट्स द्वारा। दोपहर समाचार का समय होगा दिन में 2:15 पर और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम होगा दोपहर 3 बजे और दोपहर बाद 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत। आज के मेहमान में साहित्यकार लेखक विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से शाम 6:30 तक और इसी के बीच आप सुनेंगे 6 बजे हिंदी में समाचार। 6:30 शाम में सुनिए झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन। जयमाला कार्यक्रम का समय होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिए झलकी वादों की शाम, लेखक मदन मोहन खन्ना, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:15। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9 बजे और 10 बजे सुनिए छाया गीत कार्यक्रम आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30। और रात 11 बजे सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी आप सुन सकेंगे आज शाम 6:30 पर झरोखा के ही अंतर्गत।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्री रामचरितमानस का भाग 250वां सुनिए।

पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर और जीव के भेद आदि का रहस्य बताया। इस प्रकार नीति की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शूर्पणखा वहां पहुंची। वो लंकापति रावण की बहन थी, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदया। पंचवटी में दो सुंदर राजकुमारों को देख धर्म ज्ञान रहित वो नारी काम से विकल हो गई। सुंदर नारी का रूप धारण करके शूर्पणखा ने श्री राम से प्रणय निवेदन किया। विनोद में राम ने उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने अपने को दास तथा पराधीन बताते हुए उसे पुनः श्री राम के पास जाने को कहा। श्री राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करने को कहा। लक्ष्मण ने अब उसे वास्तविकता बताई। तुझे वही वरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा। खिसियाकर वो श्री राम के पास गई और उस

ने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। श्री राम से इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बिना नाक कान के कर दिया।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को मेरा आरती अंकलीकर का बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले हम राग पूरिया धनाश्री और राग पूर्वी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को राग पूरिया के बारे में बताना चाहती हूँ। ये सारे संधि प्रकाश राग जो हैं, इनमें जैसे मैं पहले आपको कह चुकी हूँ कि ऋषभ और धैवत इनमें कोमल ही होते हैं और मध्यम हमेशा तीव्र होता है, लेकिन पूरिया में धैवत शुद्ध है। और पूरिया का जो सप्तक है

यानी जो आरोह अवरोह है, और इसमें जो सुर हैं वही सुर राग मारवा में भी हैं, वही राग सोहनी में भी हैं, लेकिन फिर भी राग पूरिया अपनी एक शकल बनाए हुए है। यही सुंदरता है हमारे अभिजात संगीत की। पूरिया में कोमल रिखब, शुद्ध गंधार, तीव्र मध्यम, शुद्ध धैवत, शुद्ध निषाद। इसकी जाति शाड़व है क्योंकि इसमें पंचम वर्जित है। इसका आरोह है नीरे गामा धनी सा, तो म और ध के बीच में पंचम है ही नहीं, तो इसकी वजह से सप्तक जो है यानी इसका आरोह जो है सिर्फ छह सुरों का हो गया। इसकी वजह से इसकी जाति है शाड़व, और अवरोह है सानी धमा गरेसा। अवरोह में भी तो पंचम वर्जित है। राग पूरिया की उत्पत्ति जो है मारवा ठाट से मानी जाती है। इसका वादी स्वर है गंधार और संवादी है धैवत। पूरिया गाते समय अगर तानपुरे की पहली तार को अगर निखाद में मिलाया जाए तो इस राग की खूबसूरती जो है और बढ़ जाती है। राग पूरिया का जो आरोह अवरोह है वो मैं सुनाना चाहती हूँ।

राग पूरिया और राग मारवा और राग सोहनी तीनों रागों के स्वर जो हैं एक ही हैं, लेकिन उन्हीं स्वरों को देखिए किस तरह से उसका चलन आना जाना रखा है। पूरिया का जो चलन है कुछ इस प्रकार का है।

और यही स्वर लेकर आता है सोहनी अपने एक अलग रंग में। स्वर यही है, चलन अलग है।

अभी आपने राग पूरिया का परिचय सुना, अब हम एक फिल्मी गीत आपको सुनवा रहे हैं। राग पूरिया पर आधारित ये फिल्मी गीत आशा भोसले की आवाज में है।

0: अभी आप सुन रहे थे सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सती नाग कन्या इस फिल्म के इस गीत के साथ।

गीता दत्त की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं श्रीमती 420 इस फिल्म का गीत। रचनाकार जानिसार अख्तर और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

सकता।

0: तेरी रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं रंगीन रातें। इस फिल्म का गीत आवाज लता मंगेशकर की, केदार शर्मा के बोल, रोशन की धुन।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनिए पटरानी फिल्म का ये गीत। रचनाकार शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जल्दी फिल्म का गीत। प्रीति दुबे की आवाज में हिम्मत रॉय ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर का संगीत।

0: कहानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं द्वारकाधीश इस फिल्म का गीत, आवाजें मन्नाडे और साथियों की, भरत व्यास के बोल अविनाश व्यास की धुन।

और लीजिए अब सुनवाते हैं आपको सन्मुख बाबू का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और साथियों ने। फिल्म का नाम सती परीक्षा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, आज 9:30 बजे यानी कि 9:30 पर सुनना ना भूलिए संगीतकार मदन मोहन पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। आलेख और स्वर होगा ममता सिंह का और प्रस्तुतकर्ता होंगे रमेश गोखले। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। आज के इस अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोता कार्यक्रम में पल लेते हैं आज का सुविचार। गौतम बुद्ध का कथन है, सत्य कुछ दे या न दे पर आत्मसम्मान को गिरने नहीं देगा। तो ये था आज का सुविचार।

आज 15 जुलाई है और आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर यदि नजर डालें तो आज ही के दिन 1916 में दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग शुरू हुई थी। 1923 ईस्वी में आज ही के दिन इटली की संसद ने नया संविधान स्वीकार किया था। 1926 में आज ही के दिन बॉम्बे अब मुंबई में पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत हुई थी। 1955 में आज ही के दिन प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की थी। 1979 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1986 में आज ही के दिन महिला क्रिकेटर संध्या अग्रवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 190 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और सन 2011 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C17 के जरिए GSAT-12 का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया था।

अब डालते हैं एक नज़र आज के दिन यानी 15 जुलाई को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। आमेर के राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जय सिंह का जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1611 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में जन्म हुआ था आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी जमशेद जी जीजाभाई का। 1903 ईस्वी में जन्म हुआ था भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामराज का। प्रसिद्ध अभिनेता नाटककार निर्देशक बादल सरकार का भी जन्म हुआ था आज के दिन सन 1925 ईस्वी में। और 1937 में जन्म हुआ था आज के दिन हिंदी के जाने माने पत्रकार प्रभाष जोशी का।

अब एक नज़र उन विभूतियों पर जिनका निधन आज ही के दिन यानी विगत के वर्षों में 15 जुलाई को ही हो गया था। मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का निधन हुआ था 1967 ईस्वी में आज ही के दिन। 2004 में निधन हुआ था आज ही के दिन भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक तथा परिवार नियोजन विशेषज्ञ बानो जहांगीर कोया जी का, और गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का भी निधन हुआ था आज ही के दिन सन 2017 ईस्वी में। और श्रोताओं, अवसर की बात करें तो आज हम वर्ल्ड यूथ स्किल डे मना रहे हैं। तो ये था आज का इतिहास। और अब आइए कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक भक्ति रचना, और भक्ति रचना के बाद हम आपको बताएंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। तो आइए पहले सुनते हैं ये भक्ति रचना।

अमिताभ बच्चन के सुर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना, और इसे हमने लिया था सरकार 3 फिल्म से। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। अब आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

डीएम का अल्टीमेटम, 10 दिनों में पूरा करें सासाराम बाईपास, नहीं तो होगी कार्रवाई। जी हां, लंबे समय से निर्माणाधीन सासाराम बाईपास परियोजना की धीमी रफ्तार पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार की रात जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने बेदा ओल्ड जीटी रोड NH2 बेदा से मोकर तक निर्माणाधीन ROB एवं सासाराम बाईपास का अचौक

निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने पुल निर्माण निगम के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर हाल में अगले 10 दिनों के भीतर सभी शेष कार्य पूरे किए जाएं। डीएम ने मौके पर मौजूद वरीय परियोजना अभियंता, परियोजना कनीय अभियंता एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास तथा जिला प्रशासन रोहतास के संयुक्त तत्वावधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लेकर महिला सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता एवं कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की।

मंडलगारा सासाराम में मंगलवार को टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मंडलकारा अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने किया। इस अवसर पर उपाधीक्षक सितेश कुमार सिंह, नंदमोहन सिंह, सहायक अधीक्षक सुरेश प्रसाद सिंह एवं कुंदन कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अभियान के तहत जेल में बंद कैदियों की टीबी जांच एवं स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य टीम ने 155 पुरुष और 453 महिला बंदियों यानी कि कुल 608 कैदियों की टीबी टेस्ट किट के माध्यम से स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग का उद्देश्य टीबी के संभावित मरीजों की समय पर पहचान कर उन्हें आवश्यक जांच और उपचार उपलब्ध कराना है।

श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर रोहितेश्वर धाम सेवा समिति की बैठक, जहां कैमूर पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध रोहितेश्वर धाम मंदिर में एक माह तक लगने वाले श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर रोहतास प्रखंड मुख्यालय स्थित गायत्री मंदिर परिसर में रोहितेश्वर धाम सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पूर्व मुखिया कृष्णा सिंह यादव ने किया। बैठक में मेले को सफल और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

अब बात कैमूर ज़िले की, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए कैमूर से 3 शिक्षकों के आवेदन स्वीकृत और भभुआ में 7 दिन में शुरू होगी आईसीयू और इमरजेंसी सेवा। 7 निश्चय 3.0 के तहत ये सेवा शुरू होगी। इससे सरकारी अस्पतालों में रेफरल व्यवस्था होगी मजबूत और अनावश्यक रेफरल पर लगेगी लगाम। तो श्रोताओ, ये थी कुछ स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का हाल, और अब डालते हैं

नज़र मौसम पूर्वानुमान पर। सासाराम और आसपास के क्षेत्रों में भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 19 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। आज 15 जुलाई है और आज की बात करें तो आज वर्षा लगभग 8 मिलीमीटर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता 80% और न्यूनतम 60% रहने की संभावना है। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तो श्रोता, ये था मौसम पूर्वानुमान और अब कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं एक और गाना और गाने के बाद हम नज़र डालेंगे समाचार पत्रों की कुछ खास खास सुर्खियों पर। तो पहले सुनते हैं ये गाना।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाजों में धर्म करम फिल्म से गीत। और अब श्रोताओं, नमस्ते रोहतास कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आइए नजर डालते हैं समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। तो आज भी हमारे पास है प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र। दैनिक भास्कर अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है, बिहार के 211 प्रखंडों में आज से शुरू होंगे डिग्री कॉलेज, मुख्यमंत्री आज करेंगे इसकी शुरुआत। और ये भी खबर छापा है, टीआरआई 4 समेत बीपीएससी की सभी परीक्षाएं अब दो चरणों में ही कराई जाएगी।

दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को भी प्रमुखता से छापा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखता है ये खबर, मेरे पास शिकायत आने का मतलब नीचे काम ठीक से नहीं हुआ। राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में सीएम ने फिर कहा, 30 दिन में काम निपटाएं।

हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने इस खबर को भी प्रमुखता से छापा है। खबर है, ईरानी हमले में गोपालगंज के इंजीनियर की मौत। और इसी खबर को प्रभात खबर लिखता है, हॉर्मुज से गुजर रहे जहाज पर हमले में गोपालगंज के इंजीनियर की गई जान। जहाज पर ईरान के हमले में 10 अन्य घायल भी हुए। भारत ने ईरानी डिप्लोमेट को किया तलब। हिंदुस्तान ने इस खबर को भी अपनी सुर्खी बनाई है। लिखता है, चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जमानत बरकरार रखी। सीबीआई की याचिका को शीर्ष कोर्ट ने किया खारिज। कहा, 6 माह में अपीलों पर सुनवाई पूरी करें हाई कोर्ट।

दैनिक जागरण लिखता है, हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाज पर ईरानी हमले में गोपालगंज के युवक की मौत। थावे के मर्चेंट नेवी इंजीनियर सोनू तैनात थे जहाज पर। और ये भी खबर दिया है, भोजशाला परिसर के पास मिली नमाज की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश।

अब एक नज़र अर्थ जगत पर। तो सरकार ने पहली बार जारी किया सेवा उत्पादन सूचकांक और पश्चिम एशिया में ताज़ा संकट से सेंसेक्स व रुपया टूटे। विदेशी निकासी से 62 पैसे गिरकर 96.30 प्रति डॉलर पहुंचा रुपया। और खेल समाचारों में है फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होगी भिड़ंत। और पहले वनडे में अक्षर के 4 विकेट, इंग्लैंड की पारी 258 रन पर सिमटी। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कुछ पलों में दिल्ली से रिले समाचार प्रभात।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: This is also one of the most ambitious.
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
5: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू

0: होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
1: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों की

0: अब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
2: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
3: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग।

0: तेज। अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए। ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला। नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी। चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में दो तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत। भारत ने जोर देकर कहा, नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व। इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के साथ आरम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, और हमने लिया था लीडर फिल्म से। और इसी के साथ देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है पत्र आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त लाल बहादुर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं आप सबों की पसंद पर जंजीर फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गुलशन बाबरा ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नारायण एस्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। मिसर मोहल्ला नारायण बाजार से हमारे श्रोता हैं भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू और बी के सुरगनैया। ब्रह्मपुरा मानीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। और आप सब हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं जंजीर फिल्म का ये गाना।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। चलिए अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं मेरा साया फिल्म से एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजा मेहदी अली खां की रचना है और मदन मोहन का संगीत, और इसे सुनना चाहते हैं कलेर बिहार से हमारे श्रोता मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निगहत परवीन, सद्दा फारजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और अलीशा। वाराणसी उत्तर प्रदेश से किशोरी श्रीवास्तव, पिंकी श्रीवास्तव और संध्या श्रीवास्तव। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुवीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। करणवीर हाउस भोजो कैचिया भटिंडा से हमारे श्रोता हैं प्रेम सिंह जोड्डा, मनजीत कौर जोड्डा, करणवीर करण, दविंदर बरिंदर, सिमरन, कुलदीप एवं अभिजोत। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन

विद्यार्थी और आपके परिवार के सभी सदस्य, नया नगर सुपौल से हमारे श्रोता हैं श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। तो पेश है आप सबों की पसंद पर मेरा साया फिल्म का ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हिमालय की गोद में अब हम सुना रहे हैं आप सबों की पसंद पर इसी फिल्म से एक गीत, मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोले और कल्याण जी आनंद जी की धुन, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गढ़नुखा लालगंज बिहार से हमारे श्रोता राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आरके सिंह चौहान। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण।

पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की और नीतू। नगर पंचायत दिनारा से हमारे श्रोता हैं जयराम सिंह। नैका गांव धर्मशाला से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल। और आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और बांग्ला घाट बक्सर से ललन प्रसाद। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

पसंद आपकी कार्यक्रम में अब हम सुना रहे हैं आप सबकी पसंद पर गाइड फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और एस डी बर्मन का संगीत। सुनना चाहते हैं थाना मोड़ ग्रानोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा और लाल बाबू। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। और आप सब हैं घर सीमा से छोटू लाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव। ग्राम नहोना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ, जगदीश, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। और इसी गाने के लिए फरमाइश भेजा है

जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने भी। तो चलिए, आप सबों के लिए हम पेश कर रहे हैं गाइड फिल्म का ये गीत।

और अब कार्यक्रम पसंद आपकी के अंत में हम पेश कर रहे हैं भरोसा फिल्म से एक गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और रवि का संगीत। सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा। दतरेंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। तो लीजिए आप सब सुनिए ये गीत।

0: भरोसा फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में पटना केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ना रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं। 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, शुगर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
2: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर जिले के कासिल गांव से राज्य के नवस्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करेंगे। बीपीएससी की एकल चरण में आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब दो चरणों में होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अनापत्ति संसूचित की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की ओर से प्रचार और जनसंपर्क में आई तेजी। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 प्रखंडों में नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में आज से पठन पाठन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड स्थित कासिल गांव में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इन महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार नए डिग्री महाविद्यालयों में पहले सत्र में 6 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषयों की पढ़ाई होगी। इन महाविद्यालयों में अब तक 60,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। यहां संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जल्द ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए यहां 3,600 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। स्थायी भवन या परिसर बनने तक ये महाविद्यालय संबंधित प्रखंडों के चयनित प्लस टू विद्यालयों या अन्य राजकीय भवनों में संचालित होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में से 211 प्रखंडों में अब तक कोई भी अंकीभूत या संबद्ध डिग्री महाविद्यालय नहीं था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एकल चरण में आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब दो चरणों में होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आयोग को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की प्रक्रिया और स्वरूप तय करने के लिए आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके लिए विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। आयोग संबंधित विभागों से परामर्श लेकर परीक्षाओं को दो चरणों में आयोजित कर सकता है। इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्रणाली लागू हो सकती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच में जनशक्ति जनता दल की वीणा मानवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए। इधर प्रमुख उम्मीदवारों में एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के नामांकन वैध पाए जाने के बाद समर्थकों में उत्साह है। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, विधान पार्षद पवन सिंह समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। इधर उपचुनाव के लिए एनडीए और राजद समेत अन्य दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
2: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत

0: सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है. सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म. फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से.
1: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मजदूरी मद में 13 अरब 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हुई है. उन्होंने बताया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए इस मद में 9 अरब 24 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध करा दी गई है. श्री कुमार ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की 60% जबकि राज्य की 40% की हिस्सेदारी है. योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी. सर्वोच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति एम एन सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी बराले की पीठ ने मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से मना कर दिया. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा है. विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए. इस दौरान श्री कुमार ने अभ्यर्थियों से लोक सेवक के रूप में संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में उतारने की अपील की. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. शेष समाचार एक अंतराल के बाद.
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं. ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं. मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने आज अररिया और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है.
3: दिनांक 15 जुलाई राज्य के किशनगंज एवं अररिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है. राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है. राज्य के कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है.
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 141.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है. गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है. हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कल रात 11 बजे तक 2,21,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है.
4: गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी को रद्द कर दी गई है. इधर जिला पदाधिकारी तरुणजोत सिंह ने गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार.
1: बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में लाल निशान से लगभग 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया है कि जिले में नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है. इससे कई स्थानों पर कटाव की समस्या शुरू हो गई है. नदी का जलस्तर डुब्बा घाट में लाल निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर है. कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंधों के अंदर पानी फैलने लगा है. वहीं कमला बलान नदी झंझारपुर में 120 सेंटीमीटर

और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 113 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। महानंदा, परमान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सहरसा जिले के बनवा इटहरी प्रखंड अंतर्गत सहूरिया पंचायत में परसाहा कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामपोखर और भेड़हा गांव का सड़क संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि खरीफ मौसम के तहत जिन जिलों में बुआई और धान रोपनी की गति अपेक्षाकृत धीमी है, वहां विशेष अभियान चलाया जाएगा। विभागीय समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने जिला कृषि पदाधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण कर रोपनी कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इधर अल नीनो के संभावित दुष्प्रभावों को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR पटना ने किसानों के लिए परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार किसानों को कम आयु वाली स्वर्ण श्रेया, स्वर्ण उन्नत और प्रभात समेत सूखा सहने वाले धान बीजों की खेती करनी चाहिए। वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप परिसर में इस वर्ष नवंबर दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम का आयोजन किया जाएगा। पटना स्थित सचिवालय कक्ष में हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्यस्तरीय सहयोग शिविर में शिकायत आने के बाद वैशाली जिले के गुरौल अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राजू कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के मामले में निलंबित कर दिया गया है। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने डांस ग्रुप में शामिल तीन नाबालिग लड़कियों को मुक्त करा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत यह सफलता मिली है। उन्होंने लोगों से बाल श्रम, मानव तस्करी और शोषण के मामलों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या स्थानीय प्रशासन को सूचित करने की अपील की है। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसिया हनुमानगंज के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवार तीन महिला मजदूरों की मौत हो गई। पटना जिले के अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पुलिस ने एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। पटना पूर्वी की पुलिस अधीक्षक शैलजा ने बताया कि वैन चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। विश्व कप का फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सहयोग कार्यक्रम में सीएम ने खुद 100 समस्याएं सुलझाईं। दैनिक जागरण ने लिखा है, हॉर्मुज में वाणिज्य जहाज पर ईरानी हमले में गोपालगंज के युवक की मौत। प्रभात खबर ने फीफा विश्व कप से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर लिखा है, स्पेन 16 साल बाद फाइनल में, फ्रांस का सपना टूटा। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, अदालतों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे 7 दिन करेगा सुनवाई। राष्ट्रीय सागर लिखता है, सोनम वांगचुक 17 दिनों से अनशन पर, कई प्रमुख हस्तियों ने अनशन खत्म करने की अपील की। आज अखबार के शब्द हैं, बिहार के सभी 36 सदर अस्पतालों में अब रात में भी मिलेगी इमरजेंसी सेवा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर जिले के कासिल गांव से राज्य के नवस्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करेंगे। बीपीएससी की एकल चरण में आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब 2 चरणों में होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अनापत्ति संसूचित की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की ओर से प्रचार और जनसंपर्क में आई तेजी। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आपसे थोड़ी देर बाद यानी सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10 से सुनिएगा दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार और 10:05 पर होगा हमारा कार्यक्रम श्रम संसार।

सुबह 10:30 हम सुनवाएंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत, और 10:45 पर हमारा कार्यक्रम होगा रसधार। इसमें आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम से गीत। 11:00 से हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम

हमारी शाम की सभा में शाम 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदन। शाम 5:30 महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन। संध्या 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत और 6:05 पर हम पटना से रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

संध्या 6:30 पर हमारा ग्रामीण कार्यक्रम होगा गांव घर, और 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत। शाम 7 हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस, और संध्या 7:15 पर हमारा संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम प्रसारित होगा गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:30 बजे पटना केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार और पटना केंद्र से ही आप सुनेंगे उसके बाद जिले की हलचल। शाम 7:50 से आज आप सुनेंगे हमारा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं हर बुधवार को प्रातः 11 बजे से 12 बजे के बीच। रात्रि 9:15 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम सुर सौरव। इसमें आप सुनेंगे उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स और रात्रि 10:30 बजे से होगा कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी सासाराम है। इस समय सुबह के 9:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। श्रोताओं, गीत मालिका कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, वह विषय है जीने की कला। श्रोताओं, हम पैदा होने की तैयारी करते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं, करियर की तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि रिटायरमेंट की भी तैयारी करते हैं। लेकिन श्रोताओं, हम में से कितने लोग जीने की तैयारी करते हैं? सांसें तो हर कोई ले रहा है, लेकिन क्या हर कोई सच में जी रहा है? आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जिया जाता है।

दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शदावाज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब एक अजीब सी रेस में दौड़ रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है, आगे क्या करना है, आगे क्या होगा। श्रोताओं, अक्सर हमारी जिंदगी में दो जगहों पर अटकी रहती है, या तो हम अतीत की गलियों में भटकते रहते हैं या फिर हम भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। श्रोताओं, जीने की कला का पहला नियम है वर्तमान में जीना। तो सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को खोना कोई बुद्धिमानी नहीं है।

0: श्रोता, इस गीत को हमने लिया था घायल फिल्म से। आशा भोसले, समीर कुमार और कुमार सानू की आवाजों में आकाशवाणी सासाराम से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। और आज हम बात कर रहे हैं जीने की कला पर। तो श्रोताओं, हमारी ज्ञानेंद्रियां भी हमारी जीने की कला को प्रभावित करते हैं। हम देखकर, सुनकर जो महसूस करते हैं उसी के अनुरूप बोलते भी हैं। श्रोताओ, बोलना तो हम दो वर्ष की आयु में ही सीख जाते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है, उम्र बीत जाता है, बहुत से लोग नहीं सीख पाते हैं। जहां एक खराब बोली काम बिगाड़ देता है, वही एक अच्छा बोल आपका काम बना भी देता है। किसी ने कहा भी है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो।
1: नजर वो जो दुश्मन

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आया सावन झूम के फिल्म का ये गीत। श्रोताओं कहते हैं समय कभी किसी के लिए ठहरता नहीं है और समय की धारा में सब कुछ बह जाता है, तो बस जरूरत है सजगता की। हमें चाहिए कि होशपूर्वक अच्छे बुरे का भेद कर कोई काम करे, तभी हमारा जीवन सुखमय और सफल होगा और यही वास्तविक जीने की कला है।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब समाप्त होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमने बात की जीने की कला।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने 2.5 दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी ईजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूज़िक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूज़िक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है कि उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 बजे ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी

मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को, और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

0: सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम सब

शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

के लिए नए अवसर खुलेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य कैबिनेट के सदस्यों और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने घोषणा की कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। राज्य के योगदान को मिलाकर अगले साल मार्च तक पंचायतों के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना और VBG रामजी एक्ट 2025 के अंतर्गत नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की

0: शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल है। उन खनिजों में मोबिल्डेनिम, ग्रेफाइट, ग्लाइकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटैश, लिथियम, सीजियम और रूबीडियम शामिल है। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 100 अधिक अंक की वृद्धि के साथ 77,192 पर, जबकि निफ्टी 33 अंक बढ़कर 24,085 पर था। हुर्मुज जलडमरू मध्य में 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक सी फेरर फर्स्ट पहल शुरू की है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हुर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए हुर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। वहीं फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रम संसार।
1: श्रम संसार कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हूं आप सभी का रेडियो साथी रवि भूषण। सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, ग्रामीण भारत में रोजगार, सम्मान और सुरक्षा को एक साथ जोड़ने की मंशा से लाए गए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। इस कानून के तहत कुछ लाभार्थियों में महिलाओं की कम से कम एक तिहाई हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। यह प्रावधान सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पंजीकरण से लेकर काम आवंटन, पहचान, भुगतान, निगरानी और शिकायत निवारण तक पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से तय किया गया है। यदि इसका ईमानदारी से पालन हुआ तो जी राम जी गाँव की महिलाओं के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार का मजबूत मॉडल बन सकता है। अधिनियम के अनुसार ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए जब किसी परिवार का पंजीकरण होगा तो उसके सभी वयस्क सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे। पत्नी, बेटी या परिवार की मुखिया सबका नाम दर्ज करना होगा। उन्हें अलग से आवेदन देने या ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजीकरण की जिम्मेवारी भी ग्राम पंचायत की होगी, जिससे अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अकेले रहने वाली महिलाओं के लिए अधिनियम में विशेष व्यवस्था है। विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को अलग से विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कार्डों के आधार पर उन्हें काम देने में प्राथमिकता मिलेगी। इसका उद्देश्य है कि उन्हें अस्थायी आर्थिक सहारा मिल सके। इन विशेष कार्डों की वैधता 3 साल की होगी। ग्राम पंचायतों को यह भी

0: जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वे अपने क्षेत्र में रहने वाली ऐसी महिलाओं की पहचान करें जो अकेली हैं या जिनके पास आय का कोई अस्थायी साधन नहीं है, उन्हें विशेष रोजगार गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाए। महिला प्रधान परिवारों को भी प्राथमिकता दी गई है। ऐसे परिवारों को उन कार्यों में आगे रखा जाएगा जिनसे भविष्य में आय के अस्थायी साधन बन सके। खेत, तालाब, सिंचाई संरचनाएं, भूमि सुधार, आवास और बुनियादी ढांचे से जुड़े काम न केवल तत्काल मजदूरी देंगे बल्कि समय तक लाभ पहुंचाने वाली संपत्तियां भी तैयार करेंगे। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों की गरिमा और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। पीने का पानी, शौचालय, विश्राम स्थल और बच्चों की देखभाल की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। इससे महिलाओं के लिए काम करना सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम दे रहे थे योजना से जुड़ी कुछ खास जानकारी और अब आइए बातचीत करते हैं मनीष कुमार गोंड से जो निजी कार्यालय में काम करते हैं। खासियत यह है कि काम से कभी उबते नहीं। कार्यालय खोलने से लेकर साफ सफाई, आने वाले लोगों को पानी पिलाना, देर रात कार्यालय बंद कर घर जाना, परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए बात करते हैं एक ऐसे मेहनतकश इंसान से जो काफी छोटी उम्र से ही श्रम कर रहा है, काम कर रहा है और अपने परिवार को लेकर चल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में मनीष कुमार गोंड। मनीष कुमार गोंड, आज के अपने इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है।
1: धन्यवाद
0: मनीष जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप काफी छोटे उम्र से ही काम करते हैं, कभी ऑफिस में, कभी कहीं, कभी कहीं। आप कितने वर्ष से काम कर रहे हैं?
1: 2010 से काम कर रहे हैं जी। अभी तक कर ही रहे हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत जगह रहे हैं, अभी ठीक ठाक चल रहा है। अभी तो उतना भी नहीं ठीक है, मतलब ठीक है मिला जुला कर।
0: मनीष जी, आप 2010 से काम कर रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो 16 साल हो गया और आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप काफी छोटे उम्र से काम कर रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपने कहाँ काम करना शुरू किया?
1: पहले तो घर घरेलू काम किए थे हम लोग, और जो घर घरेलू काम किए 10 साल उजर रहे हैं, फिर इधर उधर काम किए, फिर ऑफिस में काम किए, अभी तक काम कर ही रहे हैं।
0: घरेलू काम में क्या क्या काम?
1: वो खाना देना, झाड़ू पोछा, ये सब। हाँ, चाय पानी देना लेना, ये सब, सुबह ले शाम तक ड्यूटी, अपन घर जाना।
0: मनीष कुमार गोंड जी, जब आप काम करना शुरू किए उस वक्त आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, पढ़ाई आप पूरा कर पाए या नहीं?
1: नहीं, पूरा तो नहीं कर पाए, हालात घर के कुछ खराब था, मम्मी भी नहीं थी, पापा थे तो पापा टॉर्चर कर रहे थे, पढ़ने में मन भी नहीं लगा, कमाने के पीछे हम लोग रह गए, इसीलिए नहीं पढ़ पाए। अभी संघर्ष कर रहे हैं, अभी तो कर ही रहे हैं, बेटी है, तो शादी ब्याह सब तो हो ही गया है।
0: मनीष जी, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने परिवार में कौन कौन लोग हैं?
1: एगो बहन है, एगो पापा है, मैं हूँ सिर्फ, और एगो मैडम है, एगो बेटी है, मेरी तो छोटी बेटी है, 2 साल के अभी है, अभी 2 साल में अभी कम में है कुछ है, दीदी की शादी भी हुई है, पापा हैं, मम्मी नहीं है, मम्मी एक्सपायर कर गई हैं, तब से अभी तक ले काम।
0: मम्मी कब एक्सपायर?
1: हम लोग 5 साल के, 4 साल के थे तब मम्मी एक्सपायर कर गई।
0: बहन आपसे बड़ी थी?
1: बड़ी है, मेरे से बहन बहुत बड़ी है, अभी तक मिला जुला कर बहन नहीं लेके चल रही है हमको तो
0: जी। हाँ,
1: पापा कम चलते हैं, बहन ज्यादा लेके चलती है, हमको मानती हैं बहुत।
0: तब माँ बाप के अकेले हैं?
1: मम्मी पापा के वो लड़का है, बहन भी एक ही है बस।
0: तो मनीष जी, बचपन में काम करना शुरू किया आपने, तो आपके ऊपर क्या दबाव दिया गया या आपने खुद काम करना शुरू किया कि काम करेंगे तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं है?
1: नहीं नहीं, दबाव कुछ नहीं है, तुम पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ना काम करना काम करो
0: जी,
1: उसको कोई मतलब नहीं है। हम देखे पापा उतने संपद नहीं है, तो इसलिए अपन दूसरा काम, अपना काम करने शुरू कर दिए हैं, इधर उधर होटल पर, दुकान पर, मतलब दो पैसे जहाँ से आ जाए ये सब करते रहे, तो अपन फिर लागत लगते रह गए। आदमी मिल जान पहचान हुआ, दो संगाती हुआ, मतलब ढेरे आदमी जान पहचान हो गया है
0: जी,
1: मगर लाभ अभी कुछ नहीं मिलता है। काम कीजिएगा तो दाम मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा
0: जी।
1: बात सुन।
0: तो मनीष, आप होटल में भी काम किए हैं, आपको क्या लगता है कि काम वहाँ करना सही है या सुरक्षित है?
1: नहीं, काम लेकिन करना सही, सब सही है, मगर मेहनत बहुत है, कष्ट बहुत है, इतना कष्ट है, बहुत कष्ट है। 18-18 घंटा, 14-14 घंटा ड्यूटी लेता है, मगर पैसा में दम दिलासा नहीं है। उतना मेहनत करने के बावजूद भी 400-300 रुपया मिल गया, और महीना पाए तो नहीं जाएगा तो कट लेता है, इसलिए लाभ नहीं है। हम लोग का गरीब के बहुत मारा है, शोषण है।
0: मनीष जी, आपके पिताजी क्या काम किया करते थे?
1: पापा तो राजमिस्त्री हैं, जुड़ई वाला काम करते हैं, उनको 800 मिल जाता है, 700 मिल जाता है। मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो तो दूसरा अपन ब्याह हुआ कर लिए हैं, तो वो जी अपन रहते हैं, हम लोग से मतलब उतना नहीं है
0: जी। यानी कि मनीष जी, जब आपकी माता जी का देहांत हो गया उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद तो आपका जीवन बहुत ही कष्ट में बीता होगा, उस समय कैसा लगा था आपको?
1: उस समय भी कष्ट है,

0: समय ठीक था, अभी भी कष्ट ही है जो मिला जुला के चल रहा है। भगवान के देन से भगवान जब जौना विधि रखे अब उसी चल रहा है, चल रहा है। अभी तक दीदी के अभी कुछ कर देते हैं, कुछ काम पड़ता है तो दीदी फर्ज कर देती है, ये नहीं कहती नहीं नहीं करेंगे, जानती है मजबूरी सब, वो भी मजबूरी से मैं भी मेरे मजबूरी समझती है, इसलिए वही दीदी है मेरे चलती।
1: मनीष जी, दीदी जो है आपकी, उनकी शादी किसने की थी?
0: पापा किए थे, पापा शादी किए थे लड़का देखकर। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मंदिर से शादी हुआ था, इतना तो याद है मंदिर से शादी हुआ था। दीदी के भी हस्बैंड नहीं है, गुजर गए हैं
1: जी।
0: हाँ, उसका दो बेटा है, एक बेटी है, एक बेटी अभी शादी किए हम लोग, कुछ मदद किए थे हम लोग, कुछ कहा मतलब थोड़ा बड़ा। हाँ, जो उन सपर आर्ट का वो दिए दीदी अपन करी की। अभी दो गो भगना है, वो कमाता है, आर ओर का काम ऐसे उसी काम करता है
1: जी।
0: एगो भगना पढ़ता है अभी तो
1: जी। तो दीदी आपको सपोर्ट करती है, इसका मतलब कि जो उनके दोनों बच्चे हैं वो काम अच्छा करते हैं?
0: हाँ हाँ, काम अच्छा है उन लोग का, मेरे से अच्छा काम है
1: जी।
0: हम काम सीखे नहीं, वो लोग सीखे, जो काम सीखेगा तो ही तो कमाएगा। अब सीखे नहीं किए कुछ, कोई लाइन में गई भी नहीं किए, अब यही सब मेरा हो गए, क्या आप सीखेंगे, इसलिए वो लोग ठीक ठाक है, मेरे साथ अच्छे ही है।
1: तो मनीष जी, आपने कभी कोई काम सीखने की कोशिश क्यों नहीं की?
0: नहीं सीखने का कोशिश की, पैसा के अभाव था मेरे पास, अकेले थे ना, इसलिए हर चीज देखना हुआ था। सीखना चाहते तब सीख सकते थे कुछ भी, मगर नहीं सीख पाए उतना, मतलब पैसा वैसा नहीं था, पैसा आता नहीं था। मेरे दीदी शादी हो गई, चली गई, खाने पीने का भी लाला पड़ने लगा, तो हम सोचे नहीं काम बिना पकड़ ले नहीं होगा, इसलिए काम हम पकड़े।
1: तो मनीष जी, अभी जो काम आप कर रहे हैं उस काम से आप संतुष्ट हैं?
0: उतना दिन नहीं नहीं है, तब वो ठीक है मिला जुला कर, अब ना का जगह पर ठीक है।
1: मनीष जी, परिस्थिति के कारण आपने पढ़ाई अपनी पूरी नहीं की, आपकी एक छोटी बच्ची है, बच्ची के बारे में आपने भविष्य में जरूर कुछ सोचा होगा?
0: सोचने का तो बहुत कुछ है नहीं, मगर भगवान का देन से पैसा वैसा महीना सहीना वो ठीक ठाक होगा तो देखा जाएगा, ना तो चल ही रहा है, लास्ट में मैडम के भी काम में लगा देंगे, कुछ तुम भी कर लो कुछ हम भी करें, तब तो घर के हालात चलेगा। बच्ची है, शादी है, पढ़ाई है, अभी तो पोसना है उसका, सब है ना, अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, अभी कह नहीं, चलो बच्ची छोटी 5 साल की हो जाएगी तो देखा जाएगा, तुमको भी लगा देंगे कि ना, अभी जब कुछ कमा रहे हैं ना, कमाने दो दे।
1: तो मनीष जी, आपको नहीं लगता कि आपने पढ़ाई पूरी नहीं करके गलती की, आपको अफसोस नहीं होता है?
0: क्या अफसोस हो नहीं रहा है, आज पढ़े लिखे रहते हैं, आज दो पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा, चाहे सरकारी नौकरी हो जाता है, चाहे कुछ प्राइवेट कोई जॉब पकड़ लेते हैं, कंपनी उंपनी में 30,000-40,000 महीना कमाते हैं, 7-8 हज़ार में क्या होने वाला आज के डेट में। महंगाई ऐसे दिन पर दिन जा ही रहा है, जो 100 रुपये किलो तेल था वो 200 रुपये है, हर चीज चावल जो 3,000 रुपये क्विंटल था 4,045 रुपये क्विंटल चावल है, आज किलने में हम लोग बुझा रहा है कितना महंगाई है। सरकार क्या लाभ दे रही है, 4-5 किलो चावल दे रही थे, 400 नहीं हो जाएगा कुछ, चावल है, तेल है, नून है, दाल है, ये सब कहाँ से आएगा, सब तो जुटाना पड़ेगा। गैस है, गैस 250-300 रुपये में भरवाते थे सिलेंडर, अब 1200 रुपये हो गया, 1100 रुपये हो गया, क्या ली।
1: श्रोताओं, बातें हम आगे भी करेंगे कार्यक्रम में, अब आइए लेते हैं आनंद एक बेहतरीन गाने का, जिसे हमने लिया है फिल्म कुली से, गाया है शब्बीर कुमार ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द हैं आनंद बख्शी साहब के।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म कुली का यह बेहतरीन गीत, जिसे आवाज दी थी शब्बीर कुमार ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। अब आइए करते हैं मनीष कुमार से बातचीत। मनीष जी, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, आप उन्हें पानी चाय पिलाते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, आपको नहीं लगता आप देखने में भी अच्छे हैं, आपको नहीं लगता कि पढ़ लिख लेता तो आज मैं भी इन लोगों के साथ बैठकर काम करता, अफसोस तो होता होगा?
1: बहुत बहुत अफसोस होता है, जहाँ जाते हैं वहाँ चाय पानी बनाते हैं पिलाते हैं, शर्मिंदगी तो महसूस होती है। आज पढ़ लिख रहते तो हम भी आज कंप्यूटर बैठते हैं, क्लास करते हैं, क्लास लेते किसी को, आज नहीं पढ़े लिखे हैं तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, बुरा अफसोस की बात है मेरे तो। भगवान जो जैसा आपका आप काम बताए, नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़ लेने चाहिए था हमको, आठवीं दसवां पढ़ लेते तो कुछ काम हो जाता, मगर नहीं पढ़े घर के हालात के देखते हुए।
0: तो मनीष जी, आजकल तो सरकारी स्कूल में भी, खासकर बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बहुत सारी सरकारी सुविधाएं भी मिल रही है, फीस भी कम लग रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, खाने को भोजन दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आज के डेट में जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, वो लोग तो पढ़ना चाहिए, इसलिए बहुत चीज़ की सुख सुविधा है। तो अब तो पढ़ाई लिखाई बहुत सुख सुविधा हो गया है, प्राइवेटों मास्टर रख के पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़िएगा बहुत मूर्खता है आज के डेट में, इसलिए पढ़िए, जितने पढ़िएगा उतना ज्ञान खुलेगा, समाज में रहिएगा ज्ञान खुलेगा, बड़ा अफसर लग कोई कहीं जाना है, कहीं काम है हमको जाना पड़ रहा है, भैया नहीं के पढ़ने लिखता तो बहुत शर्मिंदगी के महसूस है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। आज पढ़े रहिएगा तो कोई कुछ नहीं हो कर पाएगा, पाँचे तक पढ़िए, दसें तक पढ़िए, जितना इच्छा उतना पढ़िए, मगर पढ़िए आज की डेट में, आज की डेट में सरकारी पढ़िए प्राइवेट पढ़िए, मगर पढ़िए, जहाँ से पढ़िए पढ़िए, बिना पढ़े हुए आज की डेट में कुछ नहीं होना, मगर पढ़ना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़े रही लिख रहिएगा, कलम एकदम मजबूत रखिएगा तो कहीं टकरा जाइए कोई कोई कहीं कुछ नहीं होगा, नहीं पढ़े लिखे हैं आपको दबा देगा, समाज जीने नहीं देगा, निपड़ कर दम मुंह देगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है।
0: मनीष जी, आपकी पत्नी आपको कितना सपोर्ट करती है?
1: मेरे पत्नी तो बहुत सपोर्ट करती है, ये नहीं करती हम जो वो कुछ भी मांग नहीं करती, बहुत सपोर्ट करती है, अच्छा ले रहती है घर काम, मतलब कोई आए गए हित गन सबका देखना लखना सब करती है, मेरा तो हित गन आते हैं तो मेरे बर्डन नहीं रहता, वही सब घरेलू काम करती है अपना, जो भी आया गया देखा आया कहा नहीं, साग सब्जी सारा चीज मतलब मदद करती है सपोर्ट ले।
0: जी मनीष जी, तो आप लोग मूल रूप से सासाराम के रहने वाले हैं कि कहीं आसपास के क्षेत्रों से रहते हैं?
1: नहीं, मेरा गांव ढौड़ा धंकाड़ा है तो जैसे अब मतलब नहीं रहता, मेरे पापा 6 भाई थे तो सब बेच बाच दिए, हम भी उजा के अपने जो चाचा चाहे तो उजा गाँव रहते हैं, मेरा जमीन थोड़ा सा मिला था तो बेच दिए, हम बेच के ये तकिए में मकान वकान बना लिए हैं।
0: आप अपना मकान बना लिए हैं या किराए पर रहते हैं?
1: नहीं नहीं, हम अपना मकान बना लिए हैं, दुरूम के रूम बना लिए हैं, दुरूम का फ्लैट है
0: जी,
1: लैट्रिन बाथरूम किचन सब कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने की दिक्कत नहीं है, मेन कमाने

0: दिक्कत है आप नहीं दिक्कत।
1: मनीष जी, तो सरकार द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है, पेंशन या राशन, इसका लाभ आपको मिलता है?
0: 5 किलो चावल मिलता है
1: जी।
0: हाँ, लाभ मिलता है। जो जो आएगा फंड ले, वो तो मिलवे करता है। जो नहीं आता है, नहीं मिलता है। दवा भी सरकारी हॉस्पिटल ही पे किया है
1: जी।
0: ओम आदमी जाकर करा लेता है, तो बाहर लिखता है। लाभ मिलता है, जो है तो मिलता है, जो नहीं है नहीं मिलता है
1: जी।
0: बात
1: अच्छा, मनीष जी, आपने जो घर बनाया, तो घर खुद कमा के बनाया या कहीं से लोन लिया या किसी से कर्ज लिया?
0: नहीं, खुद कमा के बनाए। लोन भी लिए, कमाए भी, घर भी, एक ट्रेन जमीन था वो जो बेच के बनाए। मगर सरकारी फंड से हम लोग को नहीं मिला
1: जी।
0: हाँ, कुछ भी नहीं मिला
1: जी।
0: नहीं पैखाना का मिला, नहीं कुछ मिला, नहीं कुछ मिला। सब अपने पैसा ले, अपने मेहनत से, अपने बल बुल पर मकान खड़ा किया हम लोग
1: जी।
0: माटी साटी भर कर, गड़ा में जमीन था, माटी भरे उठ करे, मतलब सारा चीज अपने मेहनत से, मेहनत के बल पर हम किए। कोई सपोर्ट मतलब सरकारी फंड से नहीं हुआ हम लोग का।
1: मनीष कुमार जी, आगे की क्या योजना है आपकी?
0: आगे की योजना, महीना बढ़ जाए उसी ऑफिस में तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तीसरा देखेंगे अपना धंधा पानी। दूसरा फिर ना तो दुकान दौरी देखेंगे। एगो बेटी है, 8,000-7,000 में आज के डेट में क्या होने वाला है? आज के डेट में 7,000 रुपया क्या कुछ मायने नहीं है। चाय पीने जा रहे हैं तो 10 रुपये लग जा रहा है, सब्जी लेने जाएंगे 100 रुपये रोज के लग जाएगा। दूध है, दवा है, अभी 1.5 साल के बच्ची है, उसका सब पर अब जो टोटल बर्डन मेरे ही पा है। दवाई भी मेरे ही ऊपर चलता है। मैडम है, पापा हैं, कभी कभी आते हैं तो उनको भी देखना रखना, हित गुनाते जाते हैं सब, मतलब देख रहे हैं। ओके, ओपीट करा में ये, मगर महीना नहीं है, महीना बहुत कम है, मिला जुला के चल रहा है यही में। अगर बढ़िया जॉब मिल जाएगा कहीं तो अच्छा खासा पाछे अच्छा खासा मिलने लगा पैसा, तो जा रह जाएंगे, नहीं तो देखेंगे फिर अपना आगे का।
1: मनीष जी, रिश्तेदारों के साथ आपका संबंध कैसा है?
0: रिश्तेदारों का संबंध बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: जी।
0: बहुत अच्छा, कोई दूर रहिए, आइए जाइए, हम भी आते जाते हैं, वो भी आते जाते हैं मेरे ही बल पर। वो लोग आते हैं तो मेरे ही बल पर आते हैं। नए ससुराल में जाने के मतलब मनीष यहाँ जाना है हमको
1: जी।
0: मतलब अपना नहीं रिश्तेदार है, मतलब मामा का कुल बेटा बेटी है उनका रिश्तेदार है, मगर हम बुआ के लड़के हैं उनका, तो वो मेरे चलते सब बहन आती है मेरे ही बल पर। ये नहीं तो मेरा भाई है अपना, तो जाएंगे तो मान जाने, वो सब कुछ नहीं है, मेरे ही बल पर सब आता है जाता है। हम भी उसके बल पर जाते हैं तो आते हैं, मान सम्मान हित गण में बना रहा है, अभी तक बना है, चल रहा है। बहन भी है मेरी है, वो भी आती है, भगना दू दूग है, फिर से दीदी के देवर है, वो सब आता जाता, ननद है, सब कोई आता जाता है। व्यवहार अच्छा है, व्यवहार में कमी नहीं है, सब ठीक है। दीदी भी अच्छी है, दीदी बहुत मानती है हमको, गरीब परिवार से हैं हम लोग, थोड़ा सा कष्ट है मेरे को, कष्ट है तो भाई लाभ मिलना चाहिए गरीब। और
1: मनीष जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए रेडियो परिवार की ओर से, सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं। कार्यक्रम में अभी हम बातचीत कर रहे थे ऑफिस बॉय मनीष कुमार गोंड से। श्रोताओं, किसी भी उपलब्धि का आधार श्रम है। श्रम के बगैर किसी भी क्षेत्र में अस्थायी और पूर्ण सफलता पा लेना संभव नहीं है, बल्कि असंभव। श्रम की महत्ता का प्रतिवादन करते हुए एक नीतिकार ने कहा है कि उद्यम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती, सिर्फ इच्छा करने या सोचने विचारने से नहीं। हम कार्य करने की बजाय सिर्फ सोचते विचारते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं कर पाते। किसी भी उपलब्धि का आधार श्रम है। श्रम के बगैर किसी भी क्षेत्र में अस्थायी और पूर्ण सफलता अर्जित कर लेना असंभव है। किसी भी कार्य को श्रम का मूल्य चुकाए बगैर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य, संपदाएं, वैभव और उत्तम पदार्थ हैं, वे सब श्रम की ही देन है। श्रम में वह आकर्षण है कि विभिन्न पदार्थ व संपदाएं उसके पीछे चली आती हैं। श्रम मानव को परमात्मा द्वारा दी सर्वोपरि संपत्ति है। जहाँ श्रम की पूजा होगी, वहाँ कोई भी कमी नहीं रहेगी। आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में, परिश्रम हमारा देवता है, जो हमें अमूल्य वरदानों से संपन्न बनाता है। परिश्रम ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। परिश्रम धरती पर मानव जीवन का आधार है। श्रम के अभाव में मनुष्य को दुखद परिस्थितियों में गिरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। स्कॉटिश दार्शनिक कार्लाइल ने कहा है कि श्रम ही जीवन है। जीवन में श्रम को जगह दें और श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। तो श्रोताओं, श्रम संसार कार्यक्रम का आज का यह एपिसोड अब यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ हम फिर आप सबों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी रवि भूषण को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम श्रम संसार। कार्यक्रम आकाशवाणी सासाराम से प्रसारित किया गया।

लोकमाधुरी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भोजपुरी एल्बम से लोकगीत। चलिए अब कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं भरत शर्मा ब्यास के स्वर में ये श्रृंगार गीत।

इसी के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधार।

सुनील मवार की आवाज में आप सुन रहे थे शिवाधार जोगारी की रचना। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधार। अब किरण पांडे की आवाज में अब हम सुन रहे हैं तारकेश्वर मिश्रा राही की रचना

और अब रसदार कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं मोंटी बाबा के स्वर में ये श्रृंगार गीत।

और इसी के साथ रसधार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। पूर्वाह्न के 11 बजने वाले हैं। अब हम कुछ ही पलों में आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन हो

तू पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे, चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना, मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो गम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में एक कव्वाली अभी आप सुन रहे थे अधिकार फिल्म से। रमेश पंत ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं रंग तरंग। लीजिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

मेड इन इंडिया, ये था एल्बम का नाम और अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, बिटू का संगीत था। इस वक्त आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, दीवाना एल्बम का नाम था। साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया और फैज अनवर ने इसे लिखा था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: काला पत्थर। इस फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।

0: क्या होता है, जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरफ।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्रोग्राम यादों की महफिल की अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

मेरी जंग इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी कसूर। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो

0: पकड़ अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

मासूम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप घोषाल की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था आरडी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक पोस्ट या इबारत टेक्स्ट की जाती है, पोस्ट की जाती है, और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही उन शब्दों में से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से गीत बन रहे हैं, वो लिखना होता है अपने FB कमेंट्स पर। आपके प्यार भरे संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं और मैंने पढ़ भी लिए हैं। बहुत सारे गीत आपने फहरिस्त बनाकर लिखी है वहां पर, और बहुत सारे गीत मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेल खा रहे हैं, लेकिन जिनके मेल नहीं खा रहे हैं वो सुनिए, हमारे सवालों का जवाब भी दें और फिर वहां पर कमेंट कर सकते हैं। हम आएंगे आपकी लिस्ट पर भी, देखते हैं हमारी और आपकी लिस्ट कितनी मेल खाती है।

चलिए शुरुआत करते हैं आज इस प्रोग्राम की, लेकिन उन लोगों के लिए, उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार थी, सितम हो चाहे कितने भी, इस दिल को अब रोको ना यार, रिश्ता अगर सच्चा हो तो हर दर्द भी बन जाता है प्यार, कहीं ठहर जाए ऐसा समा जहां रोज रोज खेले नए ख्वाब, यादें चुपके से आकर मेरी पलकों पर उतर जाएं हर रात। रिश्ता कोई नाम का मोहताज नहीं होता, मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता, मन को छूकर मेरे ठहर जाओ तो कभी, मोहब्बत का मौसम यूं ही नाराज नहीं होता, कोई रोको ना इन उड़ते ख्वाबों के समा को, पलकों तले रोज रोज ऐसा ख्वाब नहीं होता। तो बताइए जल्दी से कि कौन से शब्द आपने चुने हैं और कौन से गीत उनसे बन पाएंगे, और शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, उसके बाद आएंगे आपके संदेशों पर।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे आंखें फिल्म से साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत। वैसे इस गीत को बहुत से श्रोताओं ने समझ लिया था, जान लिया था और लिख भी दिया था, तो सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हमारे पास आए इसी एक गीत के जो भी आपने सुना है उसके आए थे और बहुत से प्यारे प्यारे संदेश हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कितने अनमोल है ये रिश्ते, कोई याद न करे तो भी उनसे मिलने की एक उम्मीद रहती है, हमारे श्रोतागण लिखते हैं। और सचमुच यही रिश्ता है आपका, आप श्रोताओं का हमसे, यानी कि विविध भारती से, ये हमेशा बना रहे। एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम दिल रिश्ता यार, इन शब्दों से सजे आज गीत सुनेंगे और इंजॉय करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश तीन अलग अलग भावनाओं को बयां करता हुआ प्रतीत हो चला है, जहां एक और सच्चे रिश्ते की आहट है तो दूसरी ओर प्यार की दास्तां, और वहीं तीसरा पहलू यादों और ख्वाबों की दुनिया रच रहा है, यानी जीवन के मिश्रित एहसासों को समेटे हुए यादों और ख्वाबों से सजाए हुए प्यार के रिश्ते जीवन यात्रा को अनंत अभिलाषा और इच्छाओं तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, ये सभी मिले जुले रूप आज आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि काश प्यार ना किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले कर्म फिर सितम फिर अपने प्यार के लिए रोना गिड़गिड़ाना, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, दिन रात उसी में लगे रहिए। लेकिन ये भी है कि प्यार एक ऐसा एहसास है कि हर कोई अपनी जिंदगी में से गुजरता जरूर है, और वो कहते हैं ना कि जरूर करना चाहिए, प्यार इंसान को बदल देता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भारत जीवन के एक सुंदर उत्सव का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है, जहां प्रेम, स्मृतियां और आत्मीयता मिलकर हमारे रूखे जीवन को एक सजीव कलाकृति में बदल देते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय जीवन के विविध रंगों का मिलन है, और गीत इन्होंने लिखा है जो कि हम शामिल कर सकते हैं, देखते हैं अब कितने सारे गीत शामिल होते हैं आपकी पसंद के। चलिए बिना देरी के अगला गीत आपको सुनवाते हैं और देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने ये गीत लिखा है लिस्ट में, और उसके बाद हम अपने सवाल जवाबों पर भी आएंगे। प्रोग्राम का ये अगला गीत

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रियतमा फिल्म का नाम, योगेश ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। आपके खूबसूरत संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और इस गीत की डिटेल्स भी हम तक पहुंच चुकी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच्ची मोहब्बत जिंदगी का वो खूबसूरत ठहराव है जहां वक्त के सितम और हर दर्द भी प्यार में बदल जाते हैं। रूह से जुड़े ऐसे पाक रिश्ते किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही लिखा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता, ये तो विश्वास, अपनापन, सम्मान और सच्चे एहसास से बनता है। कई बार खून के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं और कुछ अनजाने लोग दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि ख्वाबों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है, कभी बादल, कभी पानी, कभी कोई जुदा हो गया तो फिर सपनों में आकर मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। कभी कभी

ख्वाब में रिश्ते टूट जाते हैं और सपने में टूटते ही वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। रिश्तों की डोर भी नाजुक होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। सपनों के साथ और हकीकत के साथ एक बिल्कुल महीन सी एक रेखा होती है उसके बीच। बस ये जरूर है कि मन उड़ उड़ कर उस तरफ जाना चाहता है, यानी कि सपनों की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं मिलता उसे कहीं ना कहीं वहाँ प्राप्त करना चाहता है, वहाँ उसे पाकर आनंदित होना चाहता है। हमारे पहले गीत के बारे में बात करते हुए एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में कभी सितम मिलते हैं तो कभी दिल को छू लेने वाला प्यार मिलता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर दर्द को मुस्कुराकर सहले और हर मुश्किल में साथ निभाए। बिल्कुल, रिश्ता अगर सच्चा हो तो दर्द की गुंजाइश ही नहीं रहती, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है दो दिलों के बीच में, ऐसा भी कहना है हमारे एक श्रोता का। तो ये एक्सपीरियंस की बात है और जिस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है हर किसी का अपना अपना अनुभव है। बिल्कुल, और इसीलिए तो हम यहाँ पर साझा करते हैं अपने विचार, ताकि हर कोई अपने बारे में अपने अनुभवों के बारे में लिख पाए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम अपनों के अक्सर हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, क्योंकि अपनों से चोट की उम्मीद कोई नहीं करता। अक्सर ऐसा दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, और साहिर लुधियानवी ने अपनी मशहूर शायरी में भी इस दर्द को घोल डाला है और वो गीत बहुत प्यारा है, ऐसा इन्होंने लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जो हिंदी सिनेमा के गीतकार हैं उनको पूरा क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है इसके लिए, और हर एहसासों को उन्होंने इस तरह से पिरोया है कि हमें लगता है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हर गीत हमसे जुड़ा है। लेकिन ये भी है कि जिंदगी में कुछ भी एक सा नहीं होता, बदलाव तो रहता ही है, जीवन बदलता रहता है, स्थितियां बदलती रहती है, और मौसम भी तो बदलता रहता है, मौसम का काम ही बदलना है। कहते हैं ना कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, तो ऐसा ही कुछ है। अगला गीत समा के ऊपर आप सुनिए, और साथ ही साथ क्यों ना, ये जो मौसम बदलता है इसी तरह से बहुत से परिवर्तन हमारी जिंदगी में आते हैं, तो ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आदतें एक बार अगर आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। आप मुझे लिखें, मैं इंतजार कर रही हूं आपके संदेशों का।

जमीन आसमां। इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी, जैसा कि आप सब लोगों ने अपने संदेशों में भी लिखा है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि क्या बात है, उनकी फहरिस्त से मिलते जुलते ये तीसरे नंबर का गीत भी शामिल हो गया है, ऐसा समाना होता, और बहुत दिनों के बाद ये हैट्रिक लगी है और वो बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दूसरे श्रोता हमारे एक लिखते हैं धुनों के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में अनाउंसमेंट उद्घोषणा के पहले जो हमने फिलर बजाया था उसके बारे में वर्णन किया है, साथ ही साथ उन्होंने और भी जो हमने फिलर्स बजाए थे उसके बारे में लिखा है और पूरा जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा समाना होता इसमें भी ये बेहतरीन बांसुरी का प्रीलूड यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, रोनू मजूमदार जी ने बजाया, साथ में गिटार और वाइब्रेटोन। ऐसा समाना होता, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब हमें ये सब आप लिखकर भेजते हैं, और अच्छा लगता है कि गीतों के साथ साथ जो म्यूज़िक या फिर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं उसके बारे में भी आप सोचते हैं, उसे इतने संजीदा तरीके से सुनते हैं और लिखते हैं। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सितम करने वाले से ज्यादा सितम सहने वाले को पता होता है, फिर भी वो सहता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई दूर हो या पास, पर प्यार उसके लिए हमेशा हो, कभी साथ कभी दूर, लेकिन हर परिस्थिति में प्यार होना बहुत जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए सुरीला सफर को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत सुनते हैं। इसमें आप मुझे बताएं कि अभिनेता और अभिनेत्री इस गीत को जिन पर फिल्माया गया है वो कौन है, वो मुझे लिख भेजिए। और साथ ही साथ हम जहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल जाता है, कभी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी थी, फिर बरसात आई तो बस बरसात ही बरसात, उससे परेशान हो

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में ये नाखुदा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। और आपका अंदाज़ा एकदम सही है, बिल्कुल ये फिल्म आया गया है राजकिरण और स्वरूप संपत पर। बिल्कुल हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र चल रहा है जिसमें विविध भारती के गीतों की झड़ी लगी है। सचमुच सुरीले सफ़र में एक से बढ़कर एक गीत है और दिल को खुश कर देते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहाँ पर आदत की बात की गई वहाँ सुबह सूरज के उगते उगने से पहले जाग जाते हैं और ध्यान योग करते हैं। दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आपका जो स्वास्थ्य है और आयु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि समय कोई बांध नहीं सकता क्योंकि निरंतर चलता रहता है। हम सभी को समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल,

एक ऐसी आदत है जो हमें जरूर शामिल करनी चाहिए अपनी जिंदगियों में, और अक्सर हम समय की कद्र थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, या फिर हमारी जो टाइमलाइंस होती है, जो हमने अपने आप को वक्त दिया रहता है, उस वक्त से भी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, समय पर अपना काम समाप्त नहीं करते, जिससे कि बाद में वो जो काम है वो बस इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इन सब चीज़ों का, परेशानियों का सबब बनता है। तो ज़रूर जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदलेगा ज़रूर, मौसम निरंतर चलता रहता है और लेकिन बदलता भी रहता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बारिश भी जल्द ही होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उठते हैं क्योंकि पूजा और योग दोनों रह जाते हैं नहीं तो, और फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि ना तो योग किया और ना ठीक से पूजा की, और फिर दूसरे जो काम है वो सब रहते हैं। तो हालांकि इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार किया है कि जल्दी उठना है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि कुछ दिन, यानी कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत को करें तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में, दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो बस वो जो शुरुआत के कुछ दिन हैं, शुरुआत के कुछ स्टेप्स हैं, शुरुआत के कुछ कदम हैं, बस वो उठाने में वक्त लगता है। बिल्कुल। सुरीला सफर में अब दिल को छू देने वाला एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे तो सभी गीत दिल को छू लेते हैं, लेकिन ये गीत, यहां पर एक शब्द छुपा है

थे किशोर कुमार की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आदतों की बात की जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो मैंने बहुत देर से आपका प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया है, जुड़ा हूँ, कुछ तो मिस कर दिया है, तो अब समझ में आ रहा है कि वक्त से जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे एक और श्रोता के लिखते हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा खर्चा किया करते थे, लेकिन अब बचत को ध्यान में रखते हुए एक आदत अपना ली है कि अब बचत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, और कहते हैं ना कि मौके और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो मौका या मुसीबत कुछ भी आए उसके लिए आप हमेशा से तैयार रहिए, और बचत तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बुज़ुर्गों के लिए नियमित मॉर्निंग वॉक ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है, और ये प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर या अधिक से अधिक 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह उठकर छत पर बैठ जाते हैं और योगासन करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है, और जब सूर्य देवता उदय होने लगते हैं तभी वो सूर्य नमस्कार करते हैं, और कुछ देर तक सूरज की किरणों को देखना भी अत्यंत सुख देता है, जो कि नेत्र ज्योति में भी बढ़ावा करता है, वृद्धि करता है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि ऐसी ही कुछ एक चीज़ें हैं जो वो पहले कतराते थे करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी में उन्हें शामिल करने की, क्योंकि वो अच्छी है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आदतें आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ना कहना। ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने पे वो चीज़ करते चले जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता है, या फिर हमें उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर अगले को बुरा लग जाए तो, रिश्ता टूट जाए तो, किसी को अपमानजनक लगे तो, हम उन चीज़ों को करते चले जाते हैं बगैर मन के और बगैर क्षमता के, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी से भी सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

सनम तेरी कसम इस फिल्म से गीत था, किशोर कुमार की आवाज में, गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसीलिए तो ये गाना बना है, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, कि हम नाना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसने से पीड़ा दूर होती है, तो हंसना जरूर चाहिए, ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनी जिंदगी में जरूर जरूर शामिल करना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले उन्होंने भावनगर वैशाली टॉकीज में याराना और कालिया एक साथ देखी थी और इन्हें ये गीत सुनकर वो याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि छू के मेरे मन को ये गीत जो था, ये प्रेम, अपनापन और भावनाओं की कोमलता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी धुन और शब्द दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रोता के मन में मधुर यादें और भावनाएं जगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब आदत की बात आती है तो शाम को खाना बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो हम ये जो चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते, उसमें कुछ और छोटा मोटा बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें आरामदायक महसूस हो, कुछ आराम आए, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, आप नहीं तो किसी और को खाना बनाना, खाना ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर कि अपनी आरामदायक तरीके से और अपनी कन्वीनियंस से, जिसे कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बदलाव में सब करने को तैयार हूं, परंतु विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने में कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद होता है वो बाकी सबको पसंद नहीं होता, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ में गीत चलाना, बच्चों को अपना सुनना होता है और कोई और कुछ और सुनना चाहता है, तो ऐसे में जो घर है उसमें जो आवाज़ों का जो युद्ध छिड़ता है उसकी बात ही अलग हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी खुशी के लिए मोबाइल पर सुन लेते हैं धीमे आवाज़ में। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो बदलाव है, छोटे छोटे जिसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ये भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में बड़े दिल वाला इस फिल्म से गीत सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते और प्यार पर आज सुरीला सफर उन्हें बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये भी लिखते हैं एक श्रोता कि जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसके लिए ना कह

लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो हमें गलत लग रही है, सामने वाले का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, सही होता है। तो हमें दोनों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही गलत का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहो कैसे रास्ता भूल गए, ये जो गीत है ये सुनते ही उन्हें अचानक ऐसा लगा ये गीत तो सोचा भी नहीं था, तो ये गीत उनके लिए बड़ा अच्छा वाला शौक था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम बिल्कुल जानबूझकर आते हैं, रास्ता भूलकर नहीं आते हैं और बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आषाढ़ की दोपहरी को गुलजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। एक और श्रोता कहते हैं उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि सुबह से उठकर रेडियो का कान मरोड़ते हैं और इस आदत से पूरा घर परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी बुरी आदत जो दूसरों को बुरी लगती है लेकिन बुरी नहीं है, इसे बरकरार रखिए, इसे बिल्कुल भी ना बदलें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 211 प्रखंडों में नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में आज से पठन पाठन की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर जिले के कासिल गांव में आयोजित समारोह के दौरान इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद थे। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार नए डिग्री महाविद्यालयों में पहले सत्र में 6 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की पढ़ाई होगी। इन महाविद्यालयों में अब तक 60,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज पटना में बैठक होगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। जाने माने शिक्षक और जन सुराज नेता डॉक्टर के सी सिन्हा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सराबकी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। डॉक्टर सिन्हा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जन सुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वहीं जन सुराज नेता

0: लड्डू सिंह और गोपाल सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवान जिले के महाराजगंज में सबसे अधिक 81.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्णिया जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 2,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी अभियंताओं की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। विभाग ने तटबंधों और संवेदनशील स्थल पर 2400 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही एहतियात के तौर पर नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। वैशाली की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कोरोल अंचल के राजस्व कर्मचारी राजू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान कार्य में गंभीर लापरवाही, उदासीनता और अनावश्यक विलंब पाए जाने की बात की गई है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कचरा भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक दारोगा का पिस्टल और मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा एक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। बकाया मजदूरी और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हड़ताली कर्मियों ने नियोजन भवन स्थित श्रम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने उप श्रम आयुक्त पटना प्रमंडल को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए बकाया वेतन के भुगतान, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन कराने तथा अस्थायी कार्यों में आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त करने की मांग की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत के 211 ब्लॉकों में नए कायम शुदा डिग्री कॉलेजों में आज से तदरीसी अमल शुरू हो गया। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने भागलपुर ज़िला के कासिल गांव में मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान इन कॉलेजों में तालीमी सेशन का आगाज़ किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और महकमा हायर एजुकेशन के वज़ीर संजय सिंह टाइगर भी मौजूद थे। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक नए डिग्री कॉलेजों में पहले सेशन में 6 सब्जेक्टों अंग्रेज़ी, हिंदी, तवारीख, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की पढ़ाई होगी। इन कॉलेजों में अब तक 60,000 से ज़्यादा तलबा का दाखिला हुआ है। नए कायम शुदा कॉलेजों में मुतल्लिका यूनिवर्सिटियों की जानिब से असातिज़ा की तकर्री की गई है। जल्द ही बिहार रियासती यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के जरिए 3,600 से ज़ायद असिस्टेंट प्रोफेसरों की तकर्री की जाएगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में रियासती काबीना की आज पटना में मीटिंग होगी। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों से मुंसलिक कई अहम तजावीज़ को मंजूरी मिली।

0: का इम्कान है। मारूफ टीचर और जनस्वराज के लीडर डॉक्टर केसी सिन्हा ने बीजेपी की रुकनियत अख्तियार कर ली है। पटना में मुनक्दा एक प्रोग्राम में रियासती सदर संजय सरोगी ने उन्हें पार्टी की इब्तदाई रुकनियत दिलाई। डॉक्टर सिन्हा ने गुज़श्ता असम्बली इंतखाब में जनस्वराज के टिकट पर कुम्हरार असम्बली हलका से इंतखाब लड़ा था। वहीं जनस्वराज लीडर बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह ने भी बीजेपी की रुकनियत अख्तियार की है। मॉनसून की सरगर्मी से रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मगरबी हिस्सों में काफ़ी बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक सीवान ज़िला के महाराजगंज में सबसे ज़्यादा 81.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज पूर्णिया ज़िला के कुछ मकामात पर भारी बारिश हो सकती है। रियासत के दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान है। नेपाल के आबी जमाव वाले इलाके में हो रही भारी बारिश के सबब गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के की आबी सतह में लगातार इजाफा की सूरत हाल बनी हुई है। बेतिया से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सूरत हाल को देखते हुए महकमा आबी वसाइल ने अलर्ट जारी करते हुए सभी इंजीनियरों की छुट्टियाँ फौरी असर से मनसूख कर दी हैं। महकमा ने पुश्तों और हसास मकामात पर 24 घंटे निगरानी करने की हिदायत दी है। इस दौरान जिला इंतजामिया ने गंडक नदी के साहली इलाकों में रहने वाले लोगों से मोहतात रहने की अपील की है। साथ ही एहतियात के तौर पर नदी किनारे आबाद लोगों को हिफाजती और ऊंचे मकामात पर जाने की सलाह दी है। वैशाली की जिला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह ने गुरौल सर्किल के कोऑपरेटिव के मुलाजिम राजू कुमार को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई सहयोग पोर्टल पर मौसूला शिकायत के जायजा के दौरान काम में लापरवाही, बेतवज्जही और गैर जरूरी ताखिर पाए जाने के बाद की गई है। खगड़िया जिला के बेलदौर थाना इलाके के तहत कचरा भवन के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान एक दारोगा का पिस्तौल और मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा एक जरायम पेशा शख्स पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। जख्मी जरायम पेशा शख्स का मुकामी अस्पताल में इलाज जारी है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। बकाया मजदूरी और कम से कम तनख्वाह के मुतालबे के पेश नज़र हड़ताली मुलाजमीन ने नियोजन भवन वाक़े लेबर ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरीन ने डिप्टी लेबर कमिश्नर पटना डिवीज़न को 5 निकाती मुतालबात के मकतूब पेश करते हुए बकाया तनख्वाह की अदायगी, सर्विस सिक्योरिटी को यकीनी बनाने, कम से कम मजदूरी जाब्ता की तामील कराने और मकामी कामों में आउटसोर्स निज़ाम ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी है तो विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

टेक्नीशियन ग्रेड वन और टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड वन के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा।

0: साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेसर

अपना लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ

0: अपना लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
0: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज

0: से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को ये भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्यासा फिल्म से आप सुन रहे थे गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे और इसकी अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: फिल्म वक्त से अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 से। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

गाइड फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों को। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, एसडी बर्मन की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और सुनने वाली हमारी सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को प्यार भरा मंजरी का नमस्कार। और थोड़ा सा आप कहेंगे अच्छा अच्छा सा भीनी भीनी हवाएं आए सब तरफ और बादल भी आए, जहाँ पानी नहीं बरस रहा वहाँ बरसे,
1: ये हम प्रार्थना करते हैं,
2: ये प्रार्थना करते हैं और ये दिली तमन्ना भी है। और देखो ना, बादलों का जो परिवार था ना वो इधर से उधर चला गया,
1: यानी हमारे साथ में लुका छिपी खेल रहे हैं बादल। हाँ,
2: अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब यहाँ बहुत बरस ली, अब चलो चलते कहीं और, तो कहीं और चले गए। लेकिन कभी ना कभी रात में आके थोड़ा बहुत बरस जाते हैं,
1: और जब रुक जाती है बारिश तो हम पसीने से भीग जाते हैं।
2: बिल्कुल, तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मौसम में अपनी सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है ना।
1: बहुत सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छाता रख लिया जाए, फिर ऐसा लगता है अरे छाता फालतू में रख लिया, हमें तो गॉगल रखना था।
2: सही बात है। और देखो इसी के साथ देखो हम लोग अपने विषय की ओर भी बढ़ चलते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है कि भाई आज तो मकई के व्यंजन के बारे में बातें होंगी। हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी है।
1: हाँ, बहुत सारे हमारे साथियों ने मकई के व्यंजन लिखकर भेजे हैं, पर जब झमाझम बारिश होती है ना उसी वक्त वो मकई के व्यंजन खाने में और भी आनंद आ जाता है। हालांकि बाजार में बहुत सारी नरम नरम मुलायम सी मकई के दाने आ चुके हैं, तो जब बारिश गिरेगी ना तो उस वक्त मकई के पकौड़े बनाएंगे, उसकी चाट तो बनती ही है, और बहुत सारे मीठे व्यंजन भी मकई के बनते हैं। हमारे
2: मकई का हलवा, मकई का सूप बनता है,
1: मकई की खीर,
2: यानी अनंत है। और फिर देखो हमारी बातें होंगी पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र, ये भी बड़ा प्यारा सा विषय है और सबके विचार भी आ गए हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा प्यारा सा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, ये भी बता सकते हैं।
1: और साथ में मंजरी जब पड़ोसी का जिक्र चलता है तो व्यंजन जो है ना कटोरी में डाल के पड़ोसियों को भी दिए जाते हैं,
2: होता है। और साथ में कभी कभी चीनी खत्म हो गई, चाय की इसका भी तो होता
1: और
2: है।
1: वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, पर उसमें जो प्यार होता था ना, उसमें जो उस उनकी जो छोटी सी एक कटोरी भर के जो व्यंजन आता था ना, उससे जो हम इतने हम घर में भी लड़ाई होती कि अरे थोड़ा मेरे लिए भी रखना। वो आंटी जो पड़ोस वाली आंटी उनकी जो फलानी फलानी सब्जी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये आदान प्रदान फिर से अगर शुरू हो जाए तो उसमें क्या बात होगी।
2: नहीं, कहीं कहीं पे तो देखो सोनाली होता भी है, अभी भी हमारे जो अच्छे अच्छे पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें भाई हिम्मत की बात होगी।
1: और जब हम कभी संकट में आ जाते हैं, संकट की घड़ी आप पड़ती है हमारे जीवन में, उस वक्त हमें हिम्मत देने के लिए हमारे पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं।
2: बिल्कुल। और साड़ियों का संसार, इसमें सोनाली आज किस साड़ी की बात करने वाले हम लोग?
1: आज हम अरनी सिल्क की जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे श्रोता भाइयों ने, हमारी बहनों ने इस विषय में भी बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए।
2: अच्छा, अरनी साड़ी को अरनी भी और अरनी दोनों भी बोला जाता है,
1: यानी अरनी भी कहते हैं और अरनी भी कहते हैं।
2: जी। और विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं आज हम, तो सबसे पहले तो विश्व युवा कौशल दिवस की सभी को बधाई दे देते हैं कि सब लोग के बच्चे जो है वो अपने अपने हुनर से आगे बढ़े, है ना,
1: और खूब तरक्की करें
2: और हम लोग आगे बढ़ते हैं गीत के साथ,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम भी चलते हैं।
1: बिल्कुल, विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं और हर वर्ष सोनाली 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी ताकि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए आवश्यक कौशलों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। आज इतने सारे तकनीकी कोर्स उपलब्ध हो गए हैं कि युवाओं को बेहतर करियर के लिए वो उनको अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। जैसे पहले होता था ना कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक जॉब के बारे में, या बिजनेस कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे जैसा सोचा जाता था। इनके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं, लोगों की सोच बदली है क्योंकि आज इंटरनेट जुड़ गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार परक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और हमारे युवाओं ने भी, युवतियों ने भी इस चीज को स्वीकारा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को कुछ कौशल सीखने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो संचार कौशल, यानी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी

0: से कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। साथ ही डिजिटल कौशल, यानी डिजिटल स्किल की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर है, फिर इंटरनेट है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सुरक्षा है और नई तकनीकों का उपयोग करना। साथ ही एआई की समझ, एआई टूल्स की जिम्मेदारी से उपयोग और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल। और समस्या समाधान और तार्किक सोच, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की बात की जाती है तो टीम का मार्गदर्शन करना और जिम्मेदारी निभाना भी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग की भावना रखना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत मायने रखती हैं। और समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कर लक्ष्य समय पर जो लक्ष्य होता बांधा किया जाता है उसको पूरा करना होता है।
0: और साथ ही वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बजट बनाना, बचत, निवेश और धन का सही प्रबंधन। साथ ही उद्यमिता, यानी नए विचारों को व्यवसाय में बदलने और रोजगार सृजित करने की क्षमता रखना। साथ ही रचनात्मकता और नवाचार, यानी नए विचारों पर काम करना, अलग अलग सोच को विकसित करना। और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संतुलित व्यवहार करना।
1: बिल्कुल। और सुनाली, इसके साथ साथ भाषा कौशल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान, अनुकूलन क्षमता, यानी बदलती परिस्थितियों और नई तकनीकों के साथ स्वयं को बदलना या ढालना, प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक भाषण, यानी आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखना, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच को समझना। आज युवाओं के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे कौशल भी आवश्यक हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सफल बना सके।
0: और वैसे ही होता है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ माता पिता जो बच्चे 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में आ गए, कि इस तरह के उन्हें कोचिंग भी के लिए भी भेजते हैं, ताकि जो बचपन से ही ये सारी क्षमताएं वो डेवलप कर लेते हैं, अगर विकसित कर लेते हैं तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत फायदा होता है। और इसी तरह की बात हमारे साथी ने भी लिखा है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य, उद्यम के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा की गई।
1: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज के समय में केवल शैक्षिक डिग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। कंप्यूटर, संचार, तकनीकी, शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व कौशल दिवस का संदेश है, कौशल ही आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य की पहचान है। तो अपनी स्किल्स को पहचान
0: डेवलप
1: करना चाहिए। और एक साथी ने और भी लिखा है कि कुकिंग स्किल्स से तकनीकी का उपयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं,
0: बहुत लाभ उठा रहे हैं। कितनी सारी गृहिणियां जो है वो अपनी कुकिंग स्किल, पहले जो पुराना जमाना हुआ करता था ना कि हम सिर्फ घर में ही खाना बनाते थे, पर आज जो अलग अलग प्रांत के लोग जो है वो दूसरे दूसरे प्रांत की डिशेस खाना पसंद कर रहे हैं, और जिससे ना गृहिणियां हैं जिनमें कुकिंग की स्किल है उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
1: बिल्कुल। और जो हमारी जो लड़कियां भी हैं वो भी अच्छी अच्छी क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी अच्छी डिशेस बना के कुकिंग स्किल्स को बढ़ावा देकर के कुछ ना कुछ अपना आर्थिक रोजगार, अपने लिए आर्थिक धन
0: कमा रही हैं।
1: तो कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए और अपनी आर्थिक मदद आप परिवार को भी कर सकते हैं और खुद के
0: भी
1: लिए
0: कर
1: तो बहुत अच्छा है।
0: यानी बस अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि हमारा ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसमें हम बहुत आगे
1: बढ़ सकते
0: हैं या पैसा कमा सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे गीत के साथ।
1: जी,

0: तो सुनाली बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, है
1: और
0: ना।
1: जब हम साड़ी पहनते हैं
0: फिर
1: उस
0: भी एक दूसरे
1: वक्त
0: की
1: भी
0: तारीफ, उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते
1: और
0: हैं,
1: हमें तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता
0: बिल्कुल। तो
1: है
0: देखो
1: ना।
0: आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ

0: गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।
0: बिल्कुल, और अरनी सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने

0: उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।
1: बिल्कुल, और अरनी सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है, और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने जाते हैं,
0: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिजाइन की जांच की जाती है और एक उत्कृष्ट अरनी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक, और जबकि जटिल डिजाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और जामिती डिजाइन होती है, और ये साड़ी वजन में बहुत हल्की होती है और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है, साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
1: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अरनी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष स्थान होता है सोनाली, और अरनी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अरनी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है।
0: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों का निर्यात होता है और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियां सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरनी साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखे, यानी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानकारी दी सुनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको बदलते रहना चाहिए ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अरनी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है।
0: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अरनी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है।
1: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर ले कि ये साड़ी है कि नहीं है,
0: और नहीं है तो खरीद ले।
1: और फिलहाल ये सुने, गीत
0: सुनते हैं।

0: तो सुनाली देखो कितनी अच्छी सी बातें इस गाने में भी थी, है ना। तो
1: कि जब
0: साड़ी
1: हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है, तो अब अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे ना, साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती हैं जब सखियां मिलती हैं।
1: यानी ये जो छोटी से जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल बहुत कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच
0: और
1: बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
0: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत क्या का लेना चाहिए रहता है, या फिर किस तरह से किस
1: हमारी
0: भाव से
1: हिम्मत बढ़
0: तारीफ करें।
1: जाती है।
0: हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है, और हम अभी हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में, कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सकें। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं, तो अब अंतराल का समय हो चुका है, तो
1: जी
0: लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले हैं शब्द हमारा विचार आपका, इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी,
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहां विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो वहां केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहां कहां रखनी चाहिए? सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, यहां पर भी हमें हिम्मत

0: दिखानी हिम्मत दिखानी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए। असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, है
1: ये
0: ना?
1: तो बहुत सही बात आपने कही। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए, गिर कर उठना फिर आगे बढ़ जाना, सपनों को सच करने का यही अफसाना है, जो डर को अपनी मंजिल के बीच न आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छू ले। हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो। ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती। बहुत सुंदर सी बात लेकर हमारे साथियों ने भेजी है।
1: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुतायत प्रयोग करते हैं। हम तो हिम्मत हार गए या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति कि वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या खतरे का निडरता से सामना करने और बड़े संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देती है। डर पर काबू पाने की क्षमता साहस को दर्शाता है। किसी मुश्किल काम को करने का पक्का इरादा, जब कोई दिलेरी पराक्रम की बात होती है इसे पराक्रम, दिलेरी, शौर्य, जीवट भी कहा जाता है।
1: एक साथी कहते हैं, एक मुहावरा है, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। अगर हम कोई असंभव कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो खुदा यानी ईश्वर जरूर मदद करेगा। बस आप को खुद पर विश्वास रखते हौसला बढ़ाए रखना है, फिर वो व्यापार करने वाले हो, कारोबारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, हिम्मत से जीवन नया पार लगा सकते हैं।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है इनको लिखना है जो हर हार को भी जीत में बदल देती है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो हमारी हार जो होती है ना वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे वाहन चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
1: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है। जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं, हम हैं साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
0: बिल्कुल। इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते हैं, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। ऐसी बातें करते तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
1: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।
0: बिल्कुल सुनाली। और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत, साहस, हौसला, इसके कई रूप है। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करते थे तो डांट पड़ जाती तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं है तो सर नहीं होती थी सर उठाने की,
1: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
0: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी, बड़े
1: उनकी आंखों से ही डरते थे,
0: उनकी आंखों से डरते थे। तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक

0: ये आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों, सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत बहुत सलाम नमस्कार करना चाहिए
1: और
0: और
1: आप
0: गीत
1: गीत सुनना
0: सुनना।
1: चाहिए।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है। पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रात 2 बजे तबियत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी जरूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती हैं। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते, जब सिर्फ दीवारें साझा हों पर दिल नहीं। ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है, तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्योहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी हो, एक दूसरे के काम ही आते हैं, तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी तो वही आपके काम आएंगे, और आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं।
3: हमारे एक साथी लिखते हैं मंजरी कि ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है, और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं, और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
2: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहां से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे जरूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे हो जाएं तो।
3: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं। इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वो ही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
2: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो हमारी प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है, त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में होते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। दरवाजे से दरवाजा जुड़ा है, जुड़ा रहे दिलों का तार, खुशी गम और हर मुश्किल में काम आते हैं पड़ोसी मित्र बार बार। क्या बात है।
3: एक साथी लिखते, पड़ोसी हमारे सबसे निकटतम सहयोगी और सच्चे मित्र होते हैं। आपातकाल में दूर बैठे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाए? त्योहारों और समारोहों में सहयोग के तरीके किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं।

0: भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी तो पड़ोसी भी, ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये छोटा सा बर्तन।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं, सोनाली पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है, ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी है, पर आज की जो जैन जी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियां बढ़ गई हैं, फ्लैट और सोसाइटी में ये ज्यादा दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है, फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे जमाने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौक पड़ी है, वो भी पता चल जाता था, और कहने पर बड़ी सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी, या अगर कोई दो दिन नहीं दिखाई दिया तो तीसरे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप दो दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। ये भावनात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात
0: बहुत
1: लिखी है।
0: सही बात की, और खासकर शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, छोटे शहरों में और गांवों में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर हक से जाकर बैठते हैं, हक से खाना खाते हैं, वहीं पर रह भी जाते हैं, पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर।
1: जी

0: तो भाई देखो सुनाली, तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगे, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि ले लेते
1: वे बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई
0: चलो
1: खाने का
0: चलो
1: आनंद
0: माफ
1: बढ़ता
0: किया है ना
1: जी।
0: चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक एक 1.5 कप या 2 कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है 1 छोटा प्याज, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टो को उबाल लें एक पैन या बर्तन में पानी डाल करके, कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने भी इसका चाट, इसकी चाट बना सकती हैं। और इसमें मसाला मिलाएं जो आपने फ्राई किया है, उसको मसाला मिलाएं। 1 बड़े कटोरे में गर्म या सामान्य कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न

0: चाट तैयार होगी।
1: यानी जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल खा सकते हैं, अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और हाँ। पड़ोसियों को चाहते हैं आप, है ना।
1: और मकई का हलवा बनाने की विधि लिखकर भेजी है कि ताजे नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गरम करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले। अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे, अर्थात पैन में चिपके नहीं। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा। ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पीसे हुए दाने डाल दे तो मकई की खीर भी बन सकती है।
0: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकईयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकईया के टुकड़े प्याज आलू टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों की आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए, है ना।
1: और एक है ना, सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, इन्हें दाने को बारीक पीस ले। अब इसमें कटी हरी मिर्च, नमक, 1-2 चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते, पर मैं तो कहूंगी किसी की जरूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और एक सफेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं, और सफेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं।
0: हाँ।
1: तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा।
0: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब रे व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है और सब्जियों को हल्का भूने पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए और गर्मा गर्म आप इसको परोसें।
1: तो यानी अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गरम गरम सूप जो है ना, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किचन में जाते हैं, कुछ नई चीज़ हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज़ बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दें। तो यानी कहना चाहिए कि हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते
1: और
0: रहना
1: श्रोताओं को
0: चाहिए।
1: कहते हैं हम धन्यवाद और
0: जी,
1: लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव।
1: क्या
2: और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे।

0: जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 का इंतजार करते थे, और हवा महल का बहुत बड़ा
1: अब
0: योगदान है।
1: 8 बजे का समय हो गया
0: आठ
1: हवा
0: बजे
1: महल
0: का हो
1: का।
0: गया, जी हाँ।
1: जी, और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी
0: जी
1: ब्रॉडकास्ट होते
0: हाँ,
1: हैं।
0: जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है।
1: क्या
0: और
1: बात
0: आपको
1: है।
0: बताऊं ममता जी, कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। मेरी जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया?
1: अच्छा
0: बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है और मैं विविध
1: अच्छा
0: भारती सुने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी।
1: जी
0: तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है।
1: जी
0: और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी
1: धन्यवाद
0: बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं, और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहाँ से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
0: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए, उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपये का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्य कृति जलनाथ पर। और जलनाथ कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं। विश्व जल वर्ष था UNO का, तो
1: जी
0: नॉर्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
1: जी
0: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं ममता जी,
1: जी
0: कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ, और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से, वो भी जल प्रलय से है।
1: जी हाँ
0: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
1: जल ही जीवन है
0: जल
1: ये
0: ही
1: कहा
0: जीवन
1: जाता
0: है,
1: था।
0: पानी के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ, वहां भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर वो उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो
1: जी
0: सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद,
0: जी
1: इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया,
0: इसमें
1: क्या रिसर्च किया
0: जी
1: आपने?
0: हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी, और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं,
1: जी
0: जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए
1: जी जी
0: बात की गई है,
1: हाँ
0: तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भावा अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूं।
1: जी जी
0: हे
1: जरूर
0: जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए। तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं
1: ऋचा।
0: हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक, इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो यह हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं,
0: जी हाँ,
1: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
0: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉयड मध्य प्रदेश में हैं।
1: जी
0: शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता
0: जी
1: था,
0: हाँ,
1: और
0: और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था सुनो भाई साधो,
1: सुनो भाई साधो जी।
0: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैं।

0: रविन्द्रनाथ त्यागी जी, वो भी मध्य प्रदेश के थे,
1: जी।
0: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड, ये तीन स्तंभ रहे हैं, और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज
1: आपके भीतर
0: अंकुरित होते रहे।
1: जी।
0: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्पिरिट की तरह काम करता है। हम
1: जी
0: कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
0: हाँ जरूर, मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है
1: जी
0: क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत, जैसा नाम से ही है,
1: जी
0: उस
1: जी
0: नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे, उनके व्यंग दुबई से, वो लेकर के और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो
1: क्या
0: इसका नाम
1: बात है।
0: मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था।
1: जी
0: जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है,
1: जी
0: यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है,
1: जी
0: अंत्योदय, जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है, उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षणा शक्ति होती है, एक,
1: मुश्किल भी होता है
0: जी
1: व्यंग्य
0: हाँ
1: लिखना,
0: जी हाँ
1: क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिखकर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें,
0: जी हाँ
1: दोनों विध। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही?
0: व्यंग में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत मैंने उसके हंसी उड़ा रहा
1: जी।
0: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष को
0: कोई
1: टारगेट
0: हमने एक पात्र चयन
1: करते हैं।
0: किया, जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बनाकर के, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं। कई
1: जी,
0: बार ये स्थितियां होती
1: बिल्कुल।
0: हैं। जी
1: तो हम किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकते हैं।
0: जी
1: हम
0: हाँ
1: इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस
0: जी
1: समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए, ममता जी आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए,
1: सुनते हैं।
0: क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक
1: लक्ष्य
0: एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता
1: जी,
0: है।
1: अमर प्रेम फिल्म का
0: ये
1: गाना
0: अमर
1: है।
0: फ्रेम फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ है,
1: जी।
0: आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना सुने।
1: सुनते हैं यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की,
1: जी
0: एम
1: हाँ
0: टेक किया,
1: जी हाँ
0: बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे,
1: जी हाँ
0: तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो शेयर
1: ममता जी,
0: करेंगे।
1: मैं इसके लिए कहूँगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: मैं इतना लकी नहीं था,
0: विरोधाभास
1: विरोधाभास रहा मेरे जीवन में,
0: रहा है जी।
1: क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं
0: हाँ
1: कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूं, मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे,
0: अच्छा, क्या
1: मेरे
0: बात है।
1: पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं
0: जी
1: जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चाट डाले
0: क्या बात
1: थे।
0: है, उस समय
1: तो
0: पढ़ने का एक
1: जी हाँ,
0: खास शौक
1: और
0: हुआ करता,
1: पढ़ने
0: तो
1: का
0: दौर
1: शौक
0: था
1: था,
0: पढ़ाई का।
1: बहुत दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे,
0: जी
1: रेडियो, अखबार, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे, पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई
0: जी
1: बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक
0: कि
1: आता
0: कौन पहले
1: था,
0: पढ़ेगा।
1: कौन पहले पढ़ेगा। तो ये जमाना था। तो
0: मनोहर
1: मैंने
0: श्याम जोशी का
1: जी हाँ
0: साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान,
1: साप्ताहिक
0: तो इंतजार
1: हिंदुस्तान,
0: होता था कि कौन पहले
1: धर्मयोग,
0: पढ़ेगा, धर्मयोग।
1: धर्मयोग,
0: जी जी
1: और वो उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए।
0: जी
1: तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से, लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना
0: तो
1: जाता था।
0: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो
1: गणित
0: साहित्यिक
1: जी हाँ
0: रुचियों में जा
1: रुचि
0: रहे
1: में
0: थे,
1: था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल रहा
0: अव्वल थे।
1: जी हाँ। तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो
0: क्या
1: मैंने
0: बात है,
1: रायपुर
0: बढ़िया।
1: से BE किया। फिर उसके बाद BE करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया
0: एमटेक में।
1: MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में, तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम तब तक वो कंपनी बदल लेते
0: तब आपने एक जगह
1: हैं
0: नौकरी ज्वाइन की तो
1: लगातार
0: बस
1: की
0: वहीं पे स्थायी रूप से,
1: जी
0: लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है,
1: जी
0: लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है, तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया हो, कोई ऐसी घटना याद
1: नहीं,
0: आती
1: आप
0: है।
1: सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग
0: खपत
1: ज्यादा थी,
0: ज्यादा थी।

0: खपत ज्यादा थी। अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी इसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहां पर पानी की जो स्थिति जो ऊर्जा है उसको पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो थर्मल बिजली कहलाती है, उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ था तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहां की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और जमीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर।
1: कौन सा गाना?
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर,
0: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी जी।
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने
1: संगीतबद्ध
0: किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को। आज
1: तो
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
0: क्या बात है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी, आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: कि जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप, चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे? आपके पास शिकायतों की भरमार, आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी,
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छा
0: तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो

0: इंटरनेशनल एम्बेसडर हैं
1: हाँ
0: और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
1: जी,
0: रहे,
1: जी, जी।
0: ये उनकी उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से, क्यों, क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई। तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली, लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
1: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
0: हाँ, श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे, कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था, तब हम घर की पूजा करते।
1: जी जी।
0: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है, तब कहीं जा करके।
1: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है। चलिए, अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं, तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये 1959, ये
1: अनाड़ी फिल्म का गाना,
0: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959।
1: अच्छा।
0: 28 जुलाई 59।
1: तो सुनते हैं ये गाना।
0: जी हाँ।

0: होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और
1: ये
0: कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए
1: जरूर
0: लिखते समय।
1: व्यंग मेरी मूल विधा है,
0: जी
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूं और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं,
0: जी
1: जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और
0: बिल्कुल
1: आप इसे समझ सकती
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था,
0: जी
1: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं,
0: जी जी
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान हो?

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी
0: जी। अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ।
0: जी,
1: छोटी सी कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है, ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिए में लपेट दिया गया, और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही

0: घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर, जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर, अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
1: क्या बात है।
0: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
1: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
0: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
1: जी जी,
0: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूं मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाध जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे, पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंखें। छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चूं जैसा कुछ लिख गया। आगाध जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं अगाध हूं, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चूं। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चूं में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है। अगाध जी, आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। अगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
1: क्या बात है।
0: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन के निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहां तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चूं नाद है। सोशल मीडिया पर चूं ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं।
1: जी, क्या बात है। बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
1: जी, सौतन फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं
0: जी,
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी
1: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के, यथार्थ नायक जो जिस ढंग का, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो
0: जी
1: सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल
0: जी
1: रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से
1: जी
0: बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है
1: जी
0: तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से क्या है?
1: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है, ममता जी आपको भी याद होगा, कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा रखना होता
0: जी
1: था।
0: जी
1: और मुझे याद
0: वापस
1: है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था, डॉट पेन
0: जी
1: से
0: जी क्या बात है।
1: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी हैं रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे
0: ये
1: कि अब
0: रचना कब
1: मैंने
0: है।
1: रचना किया तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो
0: बेसब्री
1: समय
0: से
1: था।
0: इंतजार
1: जी
0: होता
1: हाँ,
0: था।
1: ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया और स्वसंपादन का युग है। हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए, मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी,
0: जी जी
1: जब
0: जी
1: हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का जमाना था, आप सब कुछ
0: जी
1: टर्न हो के। जी
0: बिल्कुल,
1: हाँ,
0: एक समय था
1: एक
0: आर्कुट
1: समय
0: बहुत
1: था। जी
0: प्रचलित
1: हाँ,
0: हुआ था। जी
1: तो उसमें भी मैं था, फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
0: जी
1: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है,
0: एक पुल का काम
1: पुल
0: करते
1: का
0: हैं
1: काम करता है।
0: कि
1: जी हाँ,
0: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से
1: नहीं, उससे
0: आप
1: परिष्कार भी
0: पार
1: होता है,
0: जा सकते हैं।
1: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में, मैंने, मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूं तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूं और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है, तो
0: तो
1: हम
0: क्या
1: बताते,
0: प्रतिक्रिया देती हैं, अच्छी बुरी?
1: सुधार के बिंदु बताती। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और
0: अच्छा।
1: महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं। तो वो, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या, कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली लेकिन सामाजिकता के, मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित।
0: जी
1: तो जो कुछ हम, जब जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है, तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहें ना रहें साहित्य रहेगा,
0: जी बिल्कुल, किताब रहेगी
1: किताब
0: आपकी,
1: रहेगी,
0: लोगों का
1: रचनाएं
0: नाम
1: रहेंगी।
0: रहेगा। जी
1: तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी
0: हाँ
1: तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे, हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश

0: में, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहां क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गईं, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है ममता जी।
1: एक उनकी बाकायदा दुनिया है और एक बहुत सारी पत्रिकाएं हैं।
0: अच्छा, ईश्वर की कृपा से वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
1: जी जी।
0: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें, तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं, आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं
1: जी। प्रवासी साहित्य की बात आपने की, तो आप खुद विदेशों में गए हैं, आपने जिक्र भी किया कि यूएस और दुबई और कई जगह पर गए हैं, तो प्रवासी साहित्यकारों उनकी दुनिया कैसी है,
0: उनकी
1: फायदे नुकसान?
0: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है।
1: जी।
0: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था, तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है। तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं और उनके संकलन भी आ रहे हैं और छप रहे हैं, चर्चा में हैं। अभी मैं
1: विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे हैं?
0: जी हाँ।
1: नाटक भी था
0: जी।
1: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
0: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ, सायास मतलब कोई जबरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है, मेरी रचना प्रक्रिया ये है। और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है। और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है।
1: जी। तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक विषय?
0: हाँ, मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के, बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब काम वाली का जीवन, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी, कितनी मेहनत वो सुबह से कहां से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प समय उपलब्ध कराती
1: है, सहायिकाएं होती हैं, सहायिकाएं होते हैं, आपको बहुत मदद मिलती है।
0: जी हाँ। तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह से मैंने कि उसके घर में जब खुशियां नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियां हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात करती, तो ये एक कहानी को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य अकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें जैसे डीपीएस लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
1: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन

0: कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपने श्रीमती जी का जिक्र किया दो
1: जी
0: बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है तो
1: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो
0: सुनाई
1: प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं
0: जी।
1: कि अच्छा लगता है। शीर्षक है, भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटें तो अच्छा लगता है।
0: क्या बात है।
1: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए लौटें तो अच्छा लगता है। ये भाव
0: जी
1: है ना, भाव काव्य के मंथन करते घर लौटें तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटें तो अच्छा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता है, क्या बात है,
1: है। कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है, आज
0: वाह
1: छंद सुने और गाते गाते घर
0: वाह,
1: लौटें तो अच्छा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता है,
1: है। मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
0: क्या बात है।
1: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक
0: जी,
1: दूसरे पर
0: लाइक
1: लगा
0: कमेंट
1: लाइक कमेंट। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है।
0: वाह,
1: कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर अच्छा
0: अच्छा लगता
1: लगता
0: है, वाह,
1: है। रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है।
0: लगता है, वाह,
1: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर,
0: क्या बात है,
1: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो अच्छा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: है। बहुत पढ़ा और लिखा बहुत, कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो अच्छा
0: अच्छा लगता
1: लगता
0: है, बहुत बढ़िया,
1: है। शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो अच्छा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, कौन सा गाना सुनवाएं?
1: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
0: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: तो विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई, अब नाटक पर फिर से आते हैं।
1: जी हाँ
0: नाटक जो लिखे हैं,
1: जी
0: तो ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो
1: जी
0: क्या आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तां हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में
0: जी
1: मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक
0: मंचन
1: जगह,
0: हुआ।
1: हाँ, मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और NSD को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है,
0: होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर
1: गीत
0: कर
1: अमर कर दो।
0: दो।
1: और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है
0: जी
1: और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं
0: जी
1: तो उसका सीधा असर, इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आंखों से देखते हैं।
0: जी
1: तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियां आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: मेरी झलकियां, मैं कामना करता हूं कि विविध भारती से भी आए,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
0: जी, जरूर आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये जरूर होगा। हमें बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने
1: जी
0: सारे साहित्यकारों को,
1: जी
0: तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
1: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो उन प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
0: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
1: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ,
0: जी
1: क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
0: विस्मृत हो रही है एक तरह
1: विस्मृत
0: से
1: हो रहे,
0: आजकल।
1: रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा यह है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता हूँ।
0: जी विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कहीं साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए यहाँ, नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा।
0: जी, बहुत बहुत
1: नमस्कार,
0: शुक्रिया।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: थैंक यू ममता जी।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: शाम के 5 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावा डांगो अपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। NIP 2012 की तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक

महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत के भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। महाराष्ट्र में मुंबई के नहवा शेवा और संताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में श्रोश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में जारी संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। 5:30 पर आप सुनेंगे महिला बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। और शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम

शाम 6:05 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से हम सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार, और 6:10 पर आप सुनेंगे हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत।

हमारा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस आप सुनेंगे 7 बजे और 7:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। गुड इवनिंग रोहतास।

7:25 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसके ठीक बाद जिले की हलचल और 7:50 समय होगा फोन इन फरमाइशी गीतों का कार्य।

शास्त्रीय गायन पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुर सौरभ का प्रसारण समय होगा रात्रि के 9 बजे और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर हमारा आधारित कार्यक्रम रसरंग और 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 10:55 पर हम जानेंगे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और रात्रि 11 बजे हम सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और इसके ठीक बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र खरवार की आवाज़ से। एल्बम का नाम है संकट को तारो। गीतकार संगीतकार कपिल देव खरवार।

धर्मेंद्र खरवार की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम संकट को तारों का ये गीत। गीतकार संगीतकार थे कपिल देव खरवार। और अब लीजिए सुनिए विधि शर्मा की आवाज़ में राधे राधे एल्बम का ये गीत। गीतकार विधि शर्मा और संगीतकार अजय प्रसन्ना का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

इसी गीत के साथ ही वंदन कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हमारा अगला प्रसारण बस अब से कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए महिला बहनों का चहेता कार्यक्रम घर आंगन।

सभी सखियों सहेलियों को आपकी रेडियो सखी चंदा का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन में। सखियों, किसी ने यह एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात कही है कि कई बार आपकी चुप्पी यानी कि खामोशी में अनगिनत जवाब छिपे होते हैं। उर्दू अदब और शायरी में भी चुप्पी को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया गया है। ना समझो कि तुमसे रूठे हुए हैं, ना समझो कि तुमसे रूठे हुए हैं, बस हालात से कुछ टूटे हुए हैं। खामोशी हमारी सब बयां कर रही है, खामोशी हमारी सब बयां कर रही है कि अंदर से हम कितने टूटे हुए हैं। सखियों, कहा जाता है कि शब्द दिल तक पहुंचते हैं लेकिन मौन आत्मा तक पहुंच जाती है। कभी कभी हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन फिर भी हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि भावनाओं को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। जब हम किसी बात पर चुप रहते हैं तो सामने वाले को सोचने का मौका मिलता है और हमारी गरिमा बनी रहती है और बहुत से अनचाहे विवादों का अंत भी हो जाता है। सखियों, यह बात जीवन के कई पहलुओं में बहुत ही गहरी बैठती है। सखियों, जब शब्द कम पड़ जाते हैं ना, या जहाँ बोलने से बात बिगड़ने का डर होता है, वहाँ चुप्पी सबसे बड़ा हथियार और जवाब बन जाती है। सखियों, हर चुप्पी कमज़ोरी भी नहीं होती, कई बार यह धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास की निशानी भी होती है। बिना कुछ कहे मुस्कुरा देना अपनापन होता है, और जब कोई दुख में चुप होता है ना,

तो उस चुप्पी में दर्द की गहराई छुपी होती है। और जब कोई विवाद में शांत रहता है तो वह अपने संस्कार और परिपक्वता का परिचय देता है। सखियों, कई रिश्ते तो इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि लोग सुनने से ज़्यादा बोलने लगते हैं। यदि हम कभी कभी शांत होकर सामने वाले की बात सुने तो कई गलत फहमियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं। सखियों, कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि हम गलत फहमियों के भी शिकार होते हैं। अपना पक्ष तो रखते हैं लेकिन दूसरे का पक्ष सुनने की हम कोशिश भी नहीं करते। हम सोचते हैं, एक कहते हैं ना सखियों, जहाँ अहम हो वहाँ रिश्ते बिगड़ ही जाते हैं। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो सामने वाले के सामने अपना पक्ष रखिए, सही है, लेकिन दूसरे का पक्ष भी आपको चुपचाप सुनने की भी ज़रूरत है, तभी रिश्ते बने रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कहीं कहीं चुप्पी भी ज़रूरी है। सखियों, हमेशा याद रखना चाहिए कि हर चुप्पी हार नहीं होती, लेकिन कभी कभी वही सबसे सशक्त उत्तर भी बन जाती है। जब शब्द बेअसर हो जाए ना, तब मौन अपनी शक्ति से सब कुछ कह देता है। सखियों, ये बहुत हद तक सच है कि खामोशी कई बार गुस्से, उलझन या बेबसी को छिपाने का एक मुखौटा होती है, लेकिन इसके पीछे छिपे हजारों अनकहे जवाबों को सिर्फ वही समझ सकता है जो सुनने की नीयत रखता हो। कहते हैं कि शब्द इंसान की पहचान बताते हैं, लेकिन मौन उसके व्यक्तित्व की गहराई दिखाता है। हर सवाल का जवाब बोलकर नहीं दिया जाता, कुछ जवाब आंखें भी देती हैं, कुछ मुस्कान और कुछ सिर्फ एक खामोशी। रिश्ते में जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं तब हर भावना व्यक्त करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, उनकी चुप्पी भी संवाद बन जाती है। कई बार तो हम किसी अपने से नाराज़ होते हैं, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। हमारी चुप्पी ही सामने वाले को यह एहसास कराती है कि कहीं ना कहीं कोई बात हमें दुख पहुंचा रही है, क्योंकि कभी कभी जहां शब्द काम नहीं करते ना, वहां चुप्पी काम कर जाती है। हालांकि सखियों, हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि हर चुप्पी अच्छी भी नहीं होती। यदि अन्याय हो रहा है आपके साथ या किसी की मदद की ज़रूरत है तब मौन नहीं रहना चाहिए। इसलिए सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना दोनों ही जीवन की महत्वपूर्ण कला होती है। जी हाँ सखियों, इसीलिए कहा जाता है कि चुप्पी हजारों सवालों का जवाब दे जाती है। और इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं हम सब मिलकर ये प्यारा सा गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: डीपर।
1: सखियों कहते हैं कि एक स्त्री के जीवन का सबसे अनमोल और सुखद एहसास होता है माँ बनना। जब एक नन्ही सी धड़कन उसकी गर्भ में जन्म लेती है, तभी उसके सपनों, भावनाओं और जिम्मेदारियों का एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। लेकिन इस खूबसूरत सफ़र को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए आज इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सखियों, गर्भावस्था किसी भी महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय होता है। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। सखियों, प्रसव पूर्व जांच का उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि संभावित समस्याओं का समय रहते पता लगाकर उन्हें रोकना भी होता है। यदि एक गर्भवती महिला नियमित चिकित्सक के संपर्क में रहती है, तो माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी भी हो सकती है। प्रसव पूर्व जांच के दौरान ऐसी महिला का वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, रक्त की जांच की जाती है। आवश्यकता होने पर रक्त समूह, शुगर की जांच, संक्रमण से संबंधित जांच और वगैरह वगैरह भी कराया जाता है। इन जांचों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि गर्भस्थ शिशु का विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं, या गर्भावस्था सामान्य तो है कि नहीं। सखियों, नियमित जांच से एनीमिया, गर्भकालीन मधुमेह, शिशु के विकास में कमी तथा अन्य जटिलताओं का समय समय पर पता लगाया जा सकता है। समय रहते उपचार होने से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। अक्सर गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, वो सोचती हैं कि हम तो भाई अंदर से ठीक महसूस कर रहे हैं, हमें चिकित्सक के पास क्या जाना। लेकिन सखियों, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि समय समय पर जांच कराने से अगर कोई भी समस्या होती है, तो वो अगर पकड़ में आती है, तो समय रहते उसका इलाज संभव हो सकता है। एक गर्भवती को डॉक्टर की सलाह के अनुसार आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां तथा आवश्यक टीके समय पर लगवाने बहुत ही ज़रूरी है। इतना ही नहीं सखियों, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, उचित आराम और हल्का व्यायाम तथा सकारात्मक वातावरण भी स्वस्थ गर्भावस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी गर्भवती महिला को तेज सिरदर्द, हाथ पैर या चेहरे पर अत्यधिक सूजन हो, तेज पेट दर्द, रक्तस्राव, पानी आना, तेज बुखार, शिशु की हलचल कम महसूस हो रही हो, अगर तो बिना किसी तरह की देर किए तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। सखियों, हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव पूर्व जांच, आवश्यक टीकाकरण और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं का लाभ उठाकर माँ और शिशु दोनों को सुरक्षित रखा जाता है। आज जो भी महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं या फिर जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं, उनको हम आप बता दें कि अगर आप माँ बनने जा रही हैं तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। बहुत सारी कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, आप उनसे सलाह ले सकती हैं या फिर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भी जाकर के जो भी सारे सलाह होते हैं वो आप उनसे ले सकती हैं। और सखियों, खान पान पर भी बहुत काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बच्चे को सीधा जाता है, हमारे बच्चे के शरीर में लगता है। तो कोशिश कीजिए कि संतुलित भोजन कीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, ताकि आप भी स्वस्थ हों और आपका बच्चा भी स्वस्थ हो। सखियों, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच बहुत ही ज़रूरी है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटी

और अब आइए बातें करते हैं महिला शक्ति योजना की। सखियों, यह योजना भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और विकास के लिए चलाई गई प्रमुख योजनाओं में से एक है। महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2017 में महिला शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी और अब इसे मिशन शक्ति के साथ जोड़ दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य सखियों ये है कि ग्रामीण और ज़रूरतमंद महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वयं एवं सामूहिक भागीदारी के जरिए महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य को कर पाएंगी। इस योजना के माध्यम से महिलाएं सरकार के साथ साथ सीधा संबंध स्थापित कर पाएंगी ताकि उन्हें आसानी से अपने अधिकारों और सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। अपना व्यवसाय, बिजनेस वगैरह के लिए सरकार 25,000 से 1,00,000 तक की सहायता प्रदान करती है, साथ में ब्याज में भी छूट देती है। इस योजना के कई और भी लाभ हैं, जैसे कि महिला हेल्पलाइन नंबर, संकट में फंसी महिलाओं के लिए 24 घंटे चलने वाली टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 की सुविधा भी उपलब्ध की गई है, जो पुलिस, अस्पताल या एम्बुलेंस से तुरंत मदद दिलाती है। इसका लाभ एक लाभ और है वन स्टॉप सेंटर की। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी सलाह, पुलिस सहायता और परामर्श की सुविधा भी मिलती है। कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अगर बात की जाए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, बुनाई, ड्राइविंग या अन्य कौशल विकास का प्रशिक्षण भी, रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। सखियों, आज के दौर में डिजिटल के काम को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है, तो इसलिए महिलाओं को डिजिटल साक्षरता के लिए पूर्ण रूप से जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है ताकि वे मोबाइल और इंटरनेट का सही से उपयोग कर सके। सखियों, इस योजना के जरिए अपने आप को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती हैं और अपने आत्मविश्वास के साथ ये कह सकती हैं कि मैं भी कर सकती हूँ। और इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं एक और गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और अब इसी के साथ सखियों अपनी रेडियो सखी चंदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इसी के साथ ही महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन अब यहीं पे संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोजपुरी लोकगीत। आज की कलाकार हैं मंदाकिनी सिंह।

0: इसी के साथ ही भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।
1: कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ कंप्यूटर के उच्च शिक्षा खातिर एगो अत्याधुनिक विश्वविद्यालय बनावे के घोषणा कैलें। श्री चौधरी कहलें कि सरकार शिक्षा के साथ साथ रोजगार देवे पर भी पूरा ध्यान दे रहल बिया। आगे कहलें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत छूटल पात्र महिला लोगन के खाता में 25 जुलाई के पहले किस्त के पैसा भेज दिहल जाई। श्री चौधरी कहलें कि भागलपुर के लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु के 30 नवंबर से पहले आम लोगन के आवाजाही खातिर खोल दहल जाई। पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता कहले बाड़न कि पर्यटन के बढ़ावा देवे खातिर सब जिला में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय खोलल जाई। उ बतौलें कि ये पहल के मकसद पर्यटन से जुड़ल सुविधा के बढ़ावल बा। पटना में पत्रकार से बातचीत में श्री गुप्ता कहलें कि पिछला 5 साल में बिहार आवे वाला पर्यटक लोग के संख्या में भारी बढ़ोतरी भइल बा। विदेश मंत्री पर्यटक लोग के मामला में राज्य पूरा देश में 9वां नंबर पर पहुंच गइल बा। पर्यटन मंत्री बतौले कि मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के माध्यम से 20 लाख नौजवान खातिर रोजगार के नया मौका बनावे के लक्ष्य बा। प्रसिद्ध शिक्षक आ जनसुराज नेता डॉक्टर केसी सिन्हा भाजपा में शामिल हो गइल बाड़न। पटना में आयोजित एगो कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता दिवैले। डॉक्टर सिन्हा पिछला विधानसभा चुनाव में जनसुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ले रहन। ओहिजा जनसुराज के नेता बिट्टू सिंह आ गोपाल सिंह भी भाजपा के सदस्यता ले लेले बाड़न। मानसून के सक्रियता से प्रदेश में बरखा के दौर जारी बा। पिछला 24 घंटा के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्सा में भारी बरखा भइल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक सीवान जिला के महाराजगंज में सबसे ज्यादा 81.2 मिलीमीटर बरखा दर्ज कैल गइल बा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहल गइल बा कि आज पूर्णिया जिला के कुछ जगह पर भारी बरखा हो सकेला। राज्य के बाकी जिला में भी पानी गिरे के संभावना बा। एने गया जिला में बरखा के दौरान बिजली गिरे से एगो छात्र के मौत हो गई जबकि 2 गो अवरी छात्र गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एने समस्तीपुर जिला के सरायगंज में मुसापुर में बिजली के चपेट में आवे से एगो महिला समेत 2 लोग के मौत हो गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रहल भारी बरखा के कारण गंडक बागमती कमला बलान आ कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखे के मिल रहल बा। बेतिया से हमार संवाददाता बतौले कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सब 36 को फाटक खोल दिहल गइल बा। आज बराज से 181,000 क्यूसेक पानी छोड़ल गइल। एने शिवहर में बागमती नदी के बढ़त जलस्तर से निचला इलाका में पानी फैल गइल बा। सीतामढ़ी में भी बागमती नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहल बा। हमार अररिया संवाददाता बतौले कि पलासी आ सिकटी प्रखंड में बकरा आ रतवा

0: नदी लगातार कटाव कर रहल बिया, जेकरा से निचला इलाका में पानी फैले के खतरा बढ़ गई बा। कोसी नदी के जलस्तर भी खगड़िया में लगातार बढ़ रहल बा। वैशाली के जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह गुरौल अंचल के राजस्व कर्मचारी राजू कुमार के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देले बाड़ी। ई कार्रवाई सहयोग पोर्टल पर मिलल शिकायत के समीक्षा के दौरान कल गई बा। काम में लापरवाही, उदासीनता आ बेमतलब के देरी पावे के बाद कार्रवाई कल गई बा। खगड़िया जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कचरा भवन के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान एगो दारोगा के पिस्टल आ मोबाइल छीन के भागे के कोशिश करत एगो अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गई। ओकरा पैर में गोली लागल बा। घायल अपराधी के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहल बा। सीतामढ़ी जिला के परिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रवाहा में पुलिस फर्जी आधार कार्ड बनावे वाला एगो गिरोह के भंडाफोड़ करत एगो आरोपी के गिरफ्तार कैले बिया। ओकरा पास से लैपटॉप, बायोमेट्रिक स्कैनर, फिंगरप्रिंट डिवाइस, प्रिंटर, आधार बनावे में इस्तेमाल हुए वाला और सामान बरामद भइल बा। कैमूर जिला अंतर्गत जीटी रोड पर स्थित टोल प्लाजा के पास पुलिस गाड़ी जांच के दौरान एगो कंटेनर से 30 गो मवेशी बरामद कैले बा। इस मामला में 4 गो तस्कर के गिरफ्तारी भइल बा। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए सुनिए हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम। किसान भाई, खेती शुरू करे से पहले मिट्टी के जांच अवश्य करा लेवे के चाही। काहे कि मिट्टी जांच हुई तबे पता चले कि कवना माटी में कौन पोषक तत्व के कमी बा। तो ई मिट्टी जांच करावे से जरूरी हो जाला कि ओकर पता जब चल जाई तो रउरा ओ तरह के ओकरा में आवश्यक उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वन के मतलब ओकरा के डालब। जैसे मान ली आदमी के तबियत खराब होता तो रउर जाँच होता तो अनुसार डॉक्टर दवाई लिखता। तो वैसे ही रउरा अगर मतलब माटी में जौन चीज के कमी बाटे तो रउरा जाँच कराब तबे पता चली कि मैंने एकरा में का कमी बाटे। तो हमनी के समय से मिट्टी के जाँच जरूर करवा लेवे के चाहिए जब तक खेत खाली रहता ओकरा में। आ देखिए, साल तो बारिश भी बहुत कम भइल, बारिश के अभाव में रोपनी भी बहुत कम हो रहल बाटे। काहे कि देखी बारिश के दिन है, आषाढ़ सावन जौन दिन है तहन बारिश के दिन है, लेकिन एकरा में बारिश ना के बराबर एकदम भइल। ऐसे तो मान ली पटवन क के लोग नहर के पानी से या डीजल पम्प से लोग कर रहल बा, लेकिन ओह तरह के मतलब रोपनी भइल ना इस साल जैसन कि होखे के चाही। आ देखी श्रोता भाई, विश्व युवा कौशल दिवस जौन बाटे हर साल 15 जुलाई के मनावल जाला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में स्थापित इस दिवस के मुख्य उद्देश्य जौन बा युवा लोग के रोजगार, सम्मानजनक कार्य आ उद्यमिता खातिर आवश्यक तकनीकी या व्यावसायिक कौशल से लैस करे के रणनीतिक महत्व के उजागर कैल बाटे। देखी हमनी के एकर उद्देश्य मेन इहे होला कि तेजी से बदलत तकनीकी दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ हरित परिवर्तन के बीच युवा लोग के भविष्य के तैयार करे के। देखी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन कैल गई रहे। यह अवसर पर कौशल सारथी या कौशल सेतु नामक दू गो डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बाटे ओकर शुभारम्भ कैल गई, जौन कि प्रशिक्षण संस्थान आ प्रदाता खातिर ऑनलाइन पारदर्शी जानकारी एकरा में दिहल जाई। आ देखी श्रोता भाई, युवा लोग खातिर स्टार्टअप जौन बाटे ऐसे जरूरी होला, काहे कि उनका नौकरी खोजे के बजाय

नौकरी देवे खातिर ई बनावल जा गई बा। युवा लोग के अपना तकनीकी समझ, जोखिम लेवे के क्षमता आ नया विचार के उपयोग करके स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर आ आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करे में मदद करेला। आ देखी युवा लोग के जीवन में स्टार्टअप जौन बाटे एक बहुत महत्व बाटे। काहे कि देखी रोजगार के नया अवसर जौन बाटे, युवा अपना विचार से नया व्यवसाय स्थापित कर सकेलन, जवना से केवल उनका समाज के ना अन्य लोग के भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होला। आ देखी तकनीकी कौशल के उपयोग जौन बाटे, युवा जौन बड़न डिजिटल नेटिव होखेलन, उ आज के तकनीकी युग में आसानी से नया सॉफ्टवेयर AI आ डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करके अपना बिजनेस के तेजी से बढ़ा सकेलन। आ देखिए अगर समस्या समाधान जौन बाटे आ नवाचार बा, युवा पीढ़ी जौन बा समाज के समस्या के नया दृष्टिकोण से देखेलन आ वैसन समाधान खोजेलन जौन कि लोगन के जिंदगी के आसान बनावेला। आ ओतने ना ही देखी वित्तीय सहायता आ सरकारी योजना जौन बाटे, युवा लोग के प्रोत्साहित करे खातिर सरकार द्वारा कई लाभकारी योजना चलावल जा रहल बा, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया अभियान, एकरा तहत माय भारत प्रोग्राम के जरिए मेंटरशिप आ इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान कइल जाला। आ देखी श्रोता भाई, एकरा में आत्मविश्वास आ नेतृत्व क्षमता जौन बाटे, एकर स्टार्टअप शुरू करे से निर्णय लेवे के क्षमता, टीम प्रबंधन आ असफलता से सीख के आगे बढ़े के हुनर जौन बाटे, ई रौरा हुनका के बढ़े के हुनर विकसित करेला। ई रौरा अपन खुद के स्टार्टअप शुरू करे के इच्छुक बानी तो ई भी रौरा शुरू कर सकेला आ एकरा से देखी रौरा काफ़ी लाभ बाटे। तो देखी अभी हमनी के बातचीत करत रह जा कि मतलब युवा लोग के स्टार्टअप से क्या फायदा बाटे। अब हमनी के तनी मन मनसाइन कल जाओ, चलल जाओ गीत गौनई के तरफ। आ देखी आज के कलाकार बानी प्रेम रंजन सिंह, तो सुने के यहाँ से गीत।

अरे की टिप टिप बदरा काबर से टिप टिप बदरा काबर से अरे मोरे अंगनवाना अरे मोरे अंग

0: देखी श्रोता भाई, अभी हमने के इतना बढ़िया गीत सुनैनी प्रेम रंजन सिंह कि टिपी टिपी बरसेला बदारवा सैया नाले गईले गवानवा, सुन के मन एकदम गदगद हो गई। इतना बढ़िया गीत सुनौला खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई, अभी हमने के एगो वार्ता के माध्यम से जानल जाइए कि महिला लोग उद्योग कैसे करी हन, इस विषय पर जानकारी देव डॉक्टर उषा पांडे। लेकिन एकरा से पहले हमने के कुछ संदेश सुन लेवे के।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता आ सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार,
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान,
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
3: महिलाएं उद्योग कैसे लगाएं, यह विचारणीय प्रश्न है। उद्योग लगाकर अपना आर्थिक उन्नयन महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामुदायिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाना एक गंभीर समस्या है। आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारणों पर निर्भर करती है। चूँकि महिलाएं देश में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः यह महसूस किया जा रहा है कि महिलाओं की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी के बिना गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यद्यपि विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर नीतियों का निर्माण किया, संस्थागत प्रणालियों तथा कार्यक्रमों की शुरुआत की और महिलाएं इसको प्राप्त कर अपना विकास कर रही हैं, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में आज भी उनकी प्रतिशतता कम है। यद्यपि सरकार सब तरफ से चौतरफा महिलाओं की स्थिति सुधारने के जुगत में लगी है, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए खुला है, फिर भी उद्योग की तरफ महिलाओं का ध्यान कम है।

नौकरी की तरफ ज़्यादा। नई पंचायती राज व्यवस्था ने चौतरफा महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकलने, समाज में बोलने का अधिकार प्रदान किया है। उद्योग धंधा प्रारंभ करने का क्षेत्र भी महिलाओं के लिए खुला हुआ है। यदि हम आप शिक्षित हैं, उद्योग लगाना चाहती हैं, तो कुछ जानकारी आपको हासिल करनी होगी। उद्योग लगाकर हम अपना विकास कैसे कर सकती हैं? लघु उद्योग के माध्यम से ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र की महिलाएं व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपना उद्योग कर सकती हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन कर छोटी छोटी बचत कर तथा आपस में लोन लेकर एवं बैंकों में समूह खाता खुलवाकर उद्योग लगा सकती हैं। छोटे छोटे उद्योग प्रारंभ किए जा सकते हैं। कुछ संस्था

एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन कर छोटी छोटी बचत कर तथा आपस में लोन लेकर एवं बैंकों में समूह खाता खुलवाकर उद्योग लगा सकती हैं। छोटे छोटे उद्योग प्रारंभ किए जा सकते हैं। कुछ संस्थान लघु उद्योगों के विकास हेतु बनाए गए हैं जो कि विभिन्न प्रकार की सहूलियतें उन्हें प्रदान करते हैं। किस संस्थान से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है उनकी एक छोटी जानकारी हासिल करनी होगी। पहला है लघु उद्योग विकास संगठन, औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इसका मुख्य कार्य लघु उद्योग के विकास हेतु नीतियां तैयार करना है। इसके साथ ही यह विभिन्न प्रदेशों में चल रहे औद्योगिक विकास एवं उनसे संबंधित संस्थानों के मध्य समन्वय रखता है। इसके अंतर्गत 17 लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रमुख स्थानों पर उनकी शाखाएं एवं विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र तथा उत्पाद केंद्र है। इसका मुख्य कार्य नए एवं पुराने उद्योगों का तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना है। मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य हैं। उन उद्योगों की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना जो लघु उद्योग के रूप में लगाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की निर्माण प्रक्रिया व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना एवं उचित परामर्श देना। सामान्य एवं विशेष सुविधाएं प्रदान करना। तकनीकी जानकारी एवं प्रबंध से संबंधित प्रशिक्षण देना। आर्थिक सुविधाएं एवं तकनीकी जानकारी जुटाना। आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक विकास में सहायता देना। मशीनें खरीदने के लिए परामर्श एवं अन्य सुविधाएं। सरकारी विपणन में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन। दूसरा संस्थान है उद्योग निर्देशालय। अगर आप उद्योग लगाना चाहती हैं तो इनके द्वारा स्थापित विभिन्न जिलों के उद्योग केंद्रों में पंजीकरण, कच्चे पक्के माल का आवंटन, भूमि भवन एवं मशीनरी का प्रबंध तथा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना इत्यादि प्रमुख कार्यों की जानकारी रखनी होगी। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ उद्योग निर्देशालय अपने जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से कच्चे माल एवं मशीनरी के समुचित उपयोग पर कड़ी निगरानी रखता है ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके। अपने प्रदेश में औद्योगिक संस्थान स्थापित करना, उनके विकास हेतु प्रयास एवं जरूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि का आयोजन करना भी इसका प्रमुख कार्य है। पक्के माल की बिक्री के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने हेतु इम्पोरियम या अन्य कई इस प्रकार की एजेंसीज खोली गई हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा आयोजित मेला एवं प्रदर्शनी में भी भाग लेकर सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार के खरीद कार्यक्रम में लघु उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर बिक्री का मौका देना भी इसके विभिन्न कार्यक्रमों में से एक है। इस प्रकार देखने में आया है कि उद्योग निर्देशालय द्वारा विभिन्न प्रकार की लगभग सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अतः औद्योगिक विकास से इस संस्था का महत्व काफ़ी अधिक है। महिलाओं को उद्योग लगाने से पूर्व उद्योग निर्देशालय से आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना, उनके उद्योग स्थापना में सहूलियत स्थापित कराएगा, या यूँ कह सकते हैं कि इस संस्था की सहायता से सारी जानकारी एवं सुविधाएं प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रदेश में एक उद्योग निर्देशालय है जो कि उद्योग निदेशक के संचालन

पालन में कार्य करता है। इसका कार्य संपूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक कार्यों का संचालन करता है। तीसरा संस्थान है लघु उद्योग सेवा संस्थान। उद्योग स्थापना की आकांक्षी महिलाओं को थोड़ी जानकारी लघु उद्योग सेवा संस्थान के बारे में रखनी होगी। लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। असलियत में विकास संगठन अपनी इन्हीं सेवा संस्थानों के माध्यम से औद्योगिक विकास कार्य का संचालन करते हैं। यह लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रत्येक प्रदेश में स्थापित है। इसके अतिरिक्त प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भी इनकी उप संस्थान शाखाएं खोली गई हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना लघु उद्योग के विकास में प्रगति लाने तथा उद्यमी को विशेष प्रकार की सुविधाएं देने के विचार से ही की गई है। इसका प्रयोजन उन्नत प्रबंधकीय एवं तकनीकी विषयों पर जानकारी को उपलब्ध कराना है। लघु उद्योगों को बुनियादी तौर पर जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह इनको दूर करने में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त ये कुछ कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। आदर्श योजनाएं, डिजाइन, नक्शे एवं तकनीकी पुस्तकों तथा मैगजीन तैयार करना, आर्थिक अन्वेषण करना इसका कार्य है, तकनीकी परामर्श एवं विकसित निर्माण विधियों का प्रदर्शन करना, विभिन्न सर्वेक्षण करना, प्रबंध एवं उत्पादन के तरीकों में सुधार करने के लिए स्वीकृत संयंत्र अध्ययन की व्यवस्था करना, छठा कच्चे माल का सही उपयोग, मशीनों के प्रकार एवं बनावट में सुधार एवं अनुसंधान कार्य है। चौथा संस्थान है राज्य लघु उद्योग निगम। विभिन्न राज्यों में विशेष कार्यों हेतु लघु उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। पांचवा संस्थान है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों को उनके द्वारा उत्पादित सामानों की बिक्री के लिए सरकारी खरीद के कार्यक्रम में सहायता करना था, परंतु अब इस निगम की मशीनरी एवं उपकरण को किराया खरीद आधार पर लघु उद्योगों को उपलब्ध कराना है। यह कार्य लघु उद्योग निगम उद्योग निर्देशालय की सम्मति एवं स्वीकृति के आधार पर ही किया जाता है। छठा संस्थान है राज्यों के वित्तीय निगम, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। लगभग सभी प्रदेशों में वित्तीय निगमों की स्थापना की गई है। इन वित्तीय निगमों का कार्य लघु उद्योगों एवं बड़े उद्योगों को औद्योगिक कार्य हेतु ऋण उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराना है। यह संस्थान केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार करता है जो इकाई उद्योग निर्देशालय से पंजीकृत होता है। इन निगमों से ऋण प्राप्त करने के लिए इनका अपना बना हुआ फार्म भरकर फार्म की फीस के साथ जमा करना पड़ता है, जिसको निगम के तकनीकी अधिकारी पूर्ण रूप से अध्ययन करके ऋण मंजूर करते हैं। इसके अतिरिक्त यह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी सहायक है, परंतु इसका मुख्य कार्य ऋण की सुविधा उचित ब्याज दर पर प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त भी यह बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग लगाने की इच्छुक महिलाओं को 5-6 बातों पर गौर करना होगा। पहला, पंजीयन कहाँ कराएं? उत्पाद क्या होगा? उत्पाद की तकनीक

0: कहाँ से हासिल होगी, कच्चा माल कहाँ उपलब्ध होगा, पांचवा मशीनरी कहाँ से प्राप्त होगी, छठा विपणन की व्यवस्था कैसी होगी, गुणवत्ता नियंत्रण की क्या विधियाँ होगी, उद्योगों की प्रकृति कैसी है, इसकी विभिन्न श्रेणियाँ क्या है, जैसे सौंदर्य वर्धक उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कॉस्मेटिक उद्योग, कृषि उत्पाद, खिलौना उद्योग। इन छोटी छोटी बातों की जानकारी लेकर महिलाएं अपना उद्योग लगा सकती हैं तथा अपना आर्थिक उन्नयन कर सकती हैं।
1: मितव्ययिता का अर्थ है बचत की आदत। पारिवारिक जीवन में अगर फिजूल खर्ची का अंत हो जाए तो जीवन रूपी गाड़ी सामान्य ढंग से चलती है। मितव्ययिता एक आदत है जो अपनी इच्छाओं को कम करने से बनती है। इच्छाएं अनंत होती हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने पसंद और जरूरत की सभी चीजों को खरीद ले, पर जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दमित नहीं कर पाता है वो सदैव या तो ऋण में रहता है या फिर किसी मानसिक तनाव में। उसे फिजूल खर्ची की आदत होती है। वैसा व्यक्ति अपनी सीमा से परे जाकर खरीदारी करता है और फिर एक वक्त आता है जब वो या तो कंगाल हो जाता है या फिर सिर फिरा। मितव्ययिता एक अच्छी आदत है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद है। इसकी आदत माता पिता को अपने बच्चों को शुरू से ही देनी चाहिए। बच्चों को जब हम पॉकेट खर्च की राशि देते हैं तब हमें उन्हें यह सिखलाना चाहिए कि वे अपने खर्च का दैनिक ब्यौरा लिखें तथा जो चीज अति आवश्यक है उसे ही खरीदा करें। इस प्रकार हम किसी व्यक्ति के अंदर यह गुण बचपन से ही डाल सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपनी जीवनी में मितव्ययिता के महत्व पर प्रकाश डाला है। वो खुद प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा अपनी डायरी में लिखा करते थे तथा पखवारे के अंत में या माह के अंत में उन खर्चों को जोड़ने के बाद पाते थे कि कम खर्च करने की आदत से अंत में आर्थिक लाभ ही होता है तथा उस लाभ का सदुपयोग पुनः अन्य किसी अच्छे कार्यों के लिए किया जा सकता है। मितव्ययिता की आदत से हम जमा पूंजी में वृद्धि कर पाते हैं। अगर हम इस आदत को बरकरार रखें तो कुछ महीनों के बाद हमारे पास एक अच्छी पूंजी हो जाती है जिसका इस्तेमाल हम गृह कार्य में, बच्चों की पढ़ाई में तथा परोपकार इत्यादि भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा सामाजिक स्तर भी बढ़ता है तथा समाज में आदर सम्मान भी मिलता है। बची हुई जमा पूंजी से हमारी क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है। आज के इस बाजारवाद की संस्कृति में अगर हमें अपनी साख समाज में बरकरार रखनी है तो यह आवश्यक है कि हम अपनी क्रय क्षमता का विकास करें और यह तभी संभव है जब हम मितव्ययिता की आदत अपने अंदर विकसित करें। आज की वैश्विक संस्कृति उपभोक्तावादी हो गई है। विकास के हर संसाधनों का मशीनीकरण भी हो रहा है, चाहे अखबार हो या पत्रिकाएं।
2: हमनी के एकरा में जैसे डेंगू बुखार बा तो मच्छर से फैलेला, एकरा में तेज बुखार होला, सिर दर्द होला, तो ये सब से हमनी के बचे के चाहिए। मच्छरदानी के प्रयोग करें, ये सब बाटे। लंबा स्थिन के कपड़ा पहनी से कहनी है जो हमनी के आज देखी बरसात जौन बाटे चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेला, बाकी कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौती भी लेकर आवेला। ऐसे एकरा में हमनी के अपना से काफ़ी बचाव करे के बाटे। हमनी के बच के रहल जाए तो हमनी के जैसे मलेरिया चिकनगुनिया ये सब रोग से हमनी के बच जाए जाए। आ देखी रोकथाम खातिर जहाँ बाढ़ लागता वो क्षेत्र में भी जाए से बचे के चाहिए। एह तरह से टाइफाइड बा ये भी एगो जीवाणु संक्रमण है जो कि दूषित भोजन पानी से फैलेला। एकरा लक्षण में लगातार बुखार, कमजोरी, पेट सिर दर्द, भूख ना लागे शामिल रहेला। ऐसे हमनी के बच बचाव जरूर करे के चाही। अब देखी तनी लगे हाथ किसान भाई लोग के सलाह मशविरा दे दिहल जाओ। मौसम के देखते हुए आवे वाला दिन में वर्षा के संभावना के देखते हुए खड़ा फसलन में सिंचाई स्थगित करी आ खाद कीटनाशक के छिड़काव जनबा आसमान साफ रहला।

कहीं करी। देखी श्रोता भाई, अरहर के जौन बाटे खेती उचास जमीन में अरहर के बोआई आसमान साफ रहला पर ही करी। बहार पूसा नौ राजेंद्र अरहर एक आ राजेंद्र अरहर दो किस्म के बोआई जौन बाटे 60 से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर करी। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम गंधक के प्रयोग करी। अरहर खातिर अनुशंसित बीज दर्जन बाटे 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाटे। आ देखी यही तरह से पशुपालन जे करता, माह के अंत तक भैंस के ब्यांत के शुरू हो जाला। बियाए वाला भैंसन के विशेष ध्यान रखी। गला घोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव खातिर अगर जून माह में टीका न लगल होके तो इस माह में टीका अवश्य लगवा दही। आ देखी कल के मौसम के पूर्वानुमान बा कि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 80% और न्यूनतम 60%। हवा के गति कल जौन बाटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले। मौसम विभाग के तरफ से कोनो तरह के चेतावनी नहीं के बिजली गरजे या बिजली गिरे के या आंधी पानी के। तो ई रहल देखी मौसम संबंधी जानकारी। अब समय हो गई श्रोता भाई बहन लोगन से विदा लेवे के। तो चले चले के बेरा में सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से पढ़ना।

इसी के साथ ही ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर अब यहीं पे संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ से। फिल्म का नाम है अमर सुहागन। SN त्रिपाठी के बोल हैं राम मूर्ति चतुर्वेदी का संगीत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: तो बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700001 42

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में अभी आपने अमर सुहागन फिल्म का ये गीत सुना। एस एन त्रिपाठी के बोल थे और राम मूर्ति चतुर्वेदी का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए दिनेश लाल यादव और हीनू अरोड़ा की आवाज़ में परिवार फिल्म का ये गीत। विनय बिहारी के बोल हैं और धनंजय मिश्रा का संगीत है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इसी के साथ ही सांझगीत कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: बुधवार का दिन है। जी हाँ, बुधवार का दिन है और मैं हूँ आपका दोस्त राजेश और कार्यक्रम का नाम है पैरा मेडिकल है पारस। जी हाँ, क्या सोच रहे हैं, पैरा मेडिकल है पारस, हाँ, जिसमें हेल्थ से संबंधित कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर हेल्थ सेक्टर में आपने पढ़ाई की तो पढ़ते पढ़ते ही आपके लिए रोजगार मिल सकता है, बनिस्पत कि आप अच्छे से पढ़ाई किए हों। चाहे पैरामेडिकल के कोर्सेज हों, ANM, GNM हो, BSc नर्सिंग हो या कोई और भी पढ़ाई हो, इसमें पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है। ये अवेयरनेस, ये बातें हम वर्षों से पूरे बिहार के युवा साथियों के लिए लेकर आते हैं बुधवार के ही दिन। और ये दिन नहीं बदला, समय नहीं बदला और इस कार्यक्रम का थीम भी नहीं बदला। बदल गए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे युवा साथी, हमारे कल के फ्यूचर। आज जिनके लिए ये कार्यक्रम प्रासंगिक है, कल उनके छोटे भाई बहनों के लिए होगा और अगले साल उनके छोटे भाई बहनों के लिए होगा। और इस कार्यक्रम को सुनते सुनते आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनल पढ़ाई की और आज रोजगार में आ गए। आज जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं या ये कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं अपने राज्य के, हाँ, एक बहुत ही अच्छे संस्थान जहाँ पैरामेडिकल की, नर्सिंग की, ANM, GNM की पढ़ाई होती है, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के चक्कनपुर इलाके में है और अब इसका एक सेंटर, हाँ, गुड़ौल में भी खुल गया है। वहाँ भी आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर नोट करें 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888। भले ही आपने सोचा हो कि मुझे MBBS करनी है, हाँ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती। जब एक रास्ते बंद होते हैं ना तो अनेकों रास्ते खुल जाते हैं, बस संभल कर देखने की जरूरत है। और यही काम 10 साल से ज्यादा वर्षों से पैरामेडिकल है पारस कर रहा है और आज भी इस कार्यक्रम की उपयोगिता खत्म नहीं हुई। राजेश आपका अपना है, आप हमारे एक्सटेंडेड फैमिली हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर NP प्रियदर्शी। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी, हम, हाँ, जोड़ते हैं।
4: डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में, बताइए।
5: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
4: हाँ।
5: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
4: जानकारियों का अभाव है।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
4: जी,
5: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
4: जी।
5: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ ISc बायोलॉजी और BSc करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई। तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना

0: मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है।
1: जी।
0: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है, तो ऐसे ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
1: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी
1: तो
0: नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है, और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक कि और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं।
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: और डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा के गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा के ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है।
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि अब नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी, अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी।
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जो आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में, अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, हमेशा इम्फेसिस करता हूँ।

0: भी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है, कोई भी विषय हो। जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से?
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: जी, जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: भी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है,
1: हाँ।
0: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
0: हाँ, जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
1: अच्छा,
0: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है,
1: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।

0: बिल्कुल, ये फिजियोथेरेपी हाँ जो है ना उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888। दूसरा नंबर है 9162413233। चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

रोहतास जिला कबड्डी संघ के तत्वाधान में जूनियर बालक कबड्डी खिलाड़ियों का चयन स्थानीय न्यू स्टेडियम फजलगंज में किया गया। रोहतास जिला कबड्डी संघ के सचिव दिव्या कुमारी ने बताया कि संघ के अध्यक्ष आलोक कुमार तिवारी की देखरेख में चयन प्रक्रिया हुई। इस चयन प्रतियोगिता में जिले के तीनों अनुमंडल के 65 कुल खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ियों में सुमित सिंह, आकाश कुमार राय, हिमांशु राय और अन्य खिलाड़ी शामिल थे।

सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर नेहा कुमारी ने कल यानी कि सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में भूमि विवाद, अतिक्रमण, दाखिल खारिज, राजस्व प्रमाण पत्र, लोक शिकायत तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित कई आवेदन प्राप्त हुए। एसडीएम ने एक एक के फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को मामले का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रोहतास जिले के कुल 19 प्रखंड में समृद्धि संस्था के बैनर तले मंत्रा फोर चेंज शिक्षा सग्रह अभियान के तहत कुल 850 गांवों में उत्प्रेरकों के माध्यम से शिक्षा चौपाल लगाई जा रही है। 10 दिवसीय शिक्षा ग्रह अभियान का सातवां दिन सुनहर पंचायत के भद्रशिला गांव में चौपाल लगाकर मनाया गया। चर्चा में बालिका शिक्षा के रास्ते में आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सके, इस पर बात की गई। पिछले चौपाल की सफलता की कहानियों पर भी चर्चा की गई।

और अब बात कैमूर जिले की, जिले में 82,000 छात्रों की अपार आईडी नहीं बनी। आधार कार्ड नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की अपार आईडी नहीं बन पा रही है। और अंचल में शिकायत मिलने के 7 दिनों में जांच रिपोर्ट देनी होगी, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। राजस्व और जनता दरबार से जुड़े मामले में हो रही लापरवाही को लेकर सदर अंचलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक गीत।

किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, इसके ठीक बाद जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, इसके ठीक बाद जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar. नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के 211 नए डिग्री महाविद्यालयों में पठन पाठन का किया शुभारंभ। कहा, भागलपुर में खुलेगा एआई और कंप्यूटर विश्वविद्यालय। राज्य मंत्री परिषद ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए बिहार ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी। सीतामढ़ी जिले के टकोर गांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार। पाकिस्तान से संपर्क की हुई पुष्टि। और नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक नदी उफान पर। वाल्मीकिनगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 प्रखंडों में नव स्थापित डिग्री महाविद्यालयों में आज से पठन पाठन की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के कासिल गांव में आयोजित समारोह के दौरान इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की उच्च शिक्षा के लिए अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की।
2: आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम करेगा।
1: श्री चौधरी ने कहा कि सरकार शिक्षा के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत छूटी हुई पात्र महिलाओं के खाते में 25 जुलाई को पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी।
2: 1,81,00,000 बहनों के खाते में हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है और 25 तारीख को जो हमारी बहनें बच गई हैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि सबके खाते में राशि भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
1: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक साथ 211 डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य का शुभारंभ किया।
3: नए डिग्री महाविद्यालयों में पहले सत्र में 6 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र की पढ़ाई होगी। इन महाविद्यालयों में अब तक 60,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। नव स्थापित महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं इन महाविद्यालयों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए 3,600 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी तथा उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने राज्य में एक साथ 211 डिग्री महाविद्यालयों की शुरुआत को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि नए महाविद्यालयों की स्थापना से राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध होगा। राज्य मंत्री परिषद ने बिहार ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई नियमावली के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर दर और शुल्क की अधिकतम सीमा तथा

0: के निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया तय की गई है। नियमावली में होल्डिंग, पंचायत क्षेत्र में व्यापार और उद्योग, पंचायत की ओर से दी जाने वाली सेवाओं तथा अन्य शुल्क से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। नई नियमावली लागू होने से ग्राम पंचायतों को कर और शुल्क की वसूली में आसानी होगी। इससे पंचायतों की स्वयं की आय ओएसआर बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगी। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मोटर वाहन टैक्स में बदलाव को भी मंजूरी दी है।
1: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य में एआई से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। बैठक में केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत खगड़िया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिले में समेकित थारू विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं की अवधि वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दी है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य की काराओं में अनुबंध के आधार पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों का मासिक मानदेय 18,800 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने जेल में बंद कैदियों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम आश्रित को मुआवजा भुगतान के लिए नीति बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पर्यटकीय सुविधाओं को विस्तार देना है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों के मामले में राज्य देश भर में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के माध्यम से 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।
2: बिहार पर्यटन क्षेत्र का पुनर्गठन कर प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों का स्थापना की दिशा में कार्य किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और पर्यटकों को सुविधा देने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना, पर्यटन नीति और निवेश प्रोत्साहन से राज्य में लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। यह बिहार के युवा महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक बड़ा अवसर है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सीतामढ़ी जिले के गाढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत टकोर गांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इनपुट पर सीतामढ़ी पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। पुलिस के अनुसार इनके पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से संपर्क की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं तथा उनके डिजिटल संपर्कों की जाँच की जा रही है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कचरा भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक दारोगा का पिस्टल

0: और मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा एक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज नालंदा स्थित वेन सांग स्मारक परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने नालंदा की अकादमिक विरासत को विश्व की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए नव नालंदा महाविहार के प्रयासों की सराहना की और संस्थान की भावी योजनाओं में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। जाने माने शिक्षक और जन सुराज नेता डॉक्टर के सी सिन्हा भाजपा में शामिल हो गए हैं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। डॉक्टर सिन्हा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जन सुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वहीं जन सुराज नेता बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने युवाओं से कौशल विकास अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में भी कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान जिले के महाराजगंज में सबसे अधिक 81.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों में, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर समस्तीपुर जिले के सरायरंजन के मूसापुर में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। वहीं गया जिले में बिजली गिरने की घटना में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। आज बराज से 1,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
2: गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी अभियंताओं की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। विभाग ने तटबंधों और संवेदनशील स्थलों पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही एहतियात के तौर पर नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: इधर शिवहर में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। सीतामढ़ी में भी बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि पलासी और सिकटी प्रखंड में बकरा और रतवा नदी लगातार कटाव कर रही है। इससे निचले इलाकों में पानी फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोसी नदी का जलस्तर भी खगड़िया में लगातार बढ़ रहा है। जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी शिव कुमार दत्ता का आज 68 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वे बिहार की ओर से संतोष ट्रॉफी खेल चुके थे। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत परवाहा में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिला अंतर्गत चीटी रोड स्थित टोल प्लाजा के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से 30 मवेशियों को बरामद किया है। इस मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र से एसएसबी, एसटीएफ और बिहार पुलिस की टीम ने एक तस्कर को 109 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के 211 नई डिग्री महाविद्यालयों में पठन पाठन का किया शुभारंभ। कहा, भागलपुर में खुलेगा एआई और कंप्यूटर विश्वविद्यालय। राज्य मंत्री परिषद ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए बिहार ग्राम पंचायत कर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी। सीतामढ़ी जिले के टकोर गांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान से संपर्क की हुई पुष्टि। और नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक नदी उफान पर, वाल्मीकिनगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
1: मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में अब ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसका शुभारंभ करते हुए जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि अब 36,000 से अधिक होल्डर्स घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से टैक्स जमा कर सकेंगे। इससे टैक्स जमा करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समय की बचत वाली होगी। इधर जिला अधिकारी के निर्देश पर जिले में पहली बार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के ई एप्लीकेशन के माध्यम से 1700 से अधिक पंचायत सचिवों, कार्यपालक सहायकों, आईटी सहायकों, हेल्थ मैनेजरों और विभिन्न विभागों के कर्मियों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों का ऑनलाइन रेंडमाइजेशन के जरिए स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया। जिला प्रशासन का दावा है कि बिहार में अपने बड़े पैमाने पर पूरी तरह डिजिटल प्रणाली के से स्थानांतरण का यह पहला मामला है। वहीं आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने के लिए 21 जुलाई से महादलित टोलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास मित्रों के माध्यम से पात्र लाभुकों के कार्ड बनाए जाए, साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान व्यय वंदना योजना से जोड़ा जाए। इस बीच सावन माह को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है। जिला अधिकारी आनंद शर्मा और वरीय पुलिस अधीक्षक योगिंदर कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस वर्ष सावन 30 जुलाई से शुरू होगा और 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन में जिले के हरलाखी क्षेत्र के कल्याणेश्वर स्थान, बिस्पी क्षेत्र के भैरवा महादेव, कपिलेश्वर स्थान और पंडौल के उगना महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उधर मधुबनी रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। निर्माण कार्य नवंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इधर बनियादगढ़ पुरातत्व स्थल पर चल रहे उत्खनन

0: कार्य की समीक्षा जिलाधिकारी ने की। 6 स्थानों पर जारी खुदाई में ईंटों की दीवार, आंगन, फर्श, मिट्टी के बर्तन और अन्य पुरातत्व शेष मिले हैं। 175 एकड़ में फैला बलियारगढ़ बिहार का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल माना जाता है। मैथिली ब्राह्मणों का विश्व प्रसिद्ध विवाहित निराधारण स्थल स्वार्थ सभा इस वर्ष 2 से 12 जुलाई तक आयोजित हुई। इस दौरान 100 से अधिक वर कन्याओं का सिद्धांत लिखा गया। स्वार्थ सभा समिति ने परिचय पंजीकरण के माध्यम से विवाह करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन राशि देने और प्रति वर्ष 10 निर्धन कन्याओं के विवाह का पूरा खर्च वहन करने का संकल्प लिया। वहीं बीते दिनों गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान ने रहिका प्रखंड के धुनसी गनवारी गांव बाबा सलेश मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सकरी और रयाम चीनी मिलों के निर्माण का कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाएगा। इससे किसानों को लाभ और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
1: श्री रयाम जल्द सरकार इस प्रयास में लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकार्पण होना है। इसका इस वर्ष से ही उसका नींव रखा जाएगा। जो बंद पड़े चीनी मिल है, सरकार का लक्ष्य है कि बंद पड़े चीनी मिल नए चीनी मिल 25 से 25 चीनी मिलने का लक्ष्य है।
0: इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर हरिंदर कुमार ने जिले के मॉडल सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उधर शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिले के मदरसों और संस्कृत विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। बीओ अमितेश कुमार ने बताया कि रहिका प्रखंड के सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की संयुक्त जांच के बाद रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है।
2: अभी आप सुन रहे थे मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।

0: अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है आपके फोनिन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो मन पसंद।
1: स्वागत है आप सभी का हमारे इस फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेलो मन पसंद। श्रोताओं, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्कार। फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम हेलो मन पसंद। हेलो मन पसंद
2: जी, नमस्कार सर।
1: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मैं मनोज कुमार यादव बोल रहा हूँ, एलहार होता बिहार से, कोचस प्रखंड में पड़ता है सर।
1: जी मनोज कुमार जी, कोचस से बोल रहे हैं, और क्या हालचाल है?
2: ठीक है, खेती बाड़ी काम चल रहा है।
1: अच्छा, खेती बाड़ी में इस समय किस खेती की तैयारी चल रही है?
2: धान की।
1: धान की रोपनी शुरू हो गई है?
2: जी जी
1: बारिश कम
2: बारिश
1: हो
2: टाइम पे है।
1: और खेती बाड़ी के अलावा कुछ करते हैं?
2: अब तो कुछ कर रहे हैं, खेती खेती हम करते हैं।
1: आकाशवाणी के और कार्यक्रम सुनते हैं इसके अलावा?
2: जी जी सुनते हैं, नमस्ते रोहतास सुनते हैं, शाम वाला सुनते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है। आज इस कार्यक्रम में क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना?
2: सर आज हम सुना जी माँ तुझे सलाम का।
1: माँ तुझे सलाम फिल्म का कौन सा गाना?
2: चोरी खन गई।
1: मनोज कुमार जी, हम आपको सुना रहे हैं आप ही की पसंद पर ये गाना।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जगदीश जी, क्या करते हैं?
1: सर जी, मैं तो रिटायर हूँ, बस सेवा मुक्त, चिंता मुक्त जीवन का आनंद लेते हैं खूब।
0: रेडियो सुनते रहते हैं, उसके आनंद लेते हैं।
1: रेडियो पक्का साथी है, ये तो हमारे साथ ही रहता है।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। और आजकल आपके यहाँ मौसम का क्या मिजाज है?
1: मौसम का मिजाज है, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, बरसात हो नहीं रही, इंतजार चल रहा है, बादल घूमते रहते हैं, बस घूम के चले जाते हैं।
0: चलिए, उम्मीद है बारिश होगी, जरूर होगी।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ी सी राहत तो मिले।
0: कौन सा गीत सुनवाएं जिससे कि आपको थोड़ा ठंडक मिले, राहत मिले?
1: सावन की घटा
0: जी, कौन सा गाना?
1: रफी साहब जी की आवाज में है, उसके बोल मैं तरन्नम में बताना चाहूंगा।
0: जी, स्वागत है।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर। हम सर गुड्डू शर्मा बोल रहे हैं, ग्राम सिवरी धमनी जिला औरंगाबाद बिहार। तो
0: गुड्डू जी क्या करते हैं?
1: दुकान चलाते हैं हम, ब्लाइंड है ना दोनों आँख से। जैसे
0: दुकान चलाते हैं, ब्लाइंड हैं, तो कैसे कर लेते हैं काम?
1: नया नया नोट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन पुराना नोट में तो जैसे कि साहब मोबाइल में की जमाना है ना, तो ऑनलाइन में पेमेंट ले लेते हैं पर भेज नहीं पाते हैं।
0: ठीक है, ग्राहक जब कोई सामान मांगते हैं तो कैसे दे पाते हैं? पहचान कैसे होती है आपको?
1: है मिल गया, हम कहीं सामान यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन जो
0: अच्छा
1: हम अपने से रखते हैं ना वो हमको मिल जाता है, अगर दूसरा को रखता है तो थोड़ा सा मतलब देखने में मतलब लेने में परेशानी होती है आपका।
0: जी, अच्छी बात है, यानी प्रैक्टिस हो गया है। से जाहिर है कि यदि व्यक्ति में जज्बा हो तो कुछ भी कर सकता है।
1: ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, किसान वाणी, बच्चों का अंकुर, आवाज, पुनर्नवा, सर्व संसार।
0: यानी कि हमारे सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ, बाकी साहित्य में भी आता है,
0: और आज क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना?
1: दिल आशिकाना का उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ऐसे करके गाना है।
0: तो ठीक है गुड्डू शर्मा जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद पर ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद जी सर, संजू दीवाना
0: जी, स्वागत है। संजू दीवाना जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सोनागाछी कोलकाता।
0: क्या करते हैं?
1: वहाँ पर मेरी दुकान है सर, पान का एक और गजरे का दुकान है। जी
0: पान और गजरे की दुकान है आपकी? दुकान तो अच्छी चलती होगी।
1: सर, 24 घंटा चलता है, 3 आदमी है, 8-8 घंटा का ड्यूटी रहता है 3 शिफ्ट में, और अच्छा चलता है
0: जी संजू जी, दुकान तो एक तरह के कई खुल गए हैं कि अगल बगल भी
1: जी।
0: कई दुकानें होंगी,
1: जी सर, अगल बगल भी दुकानें
0: लेकिन
1: हैं,
0: सामान के साथ
1: लेकिन
0: व्यवहार भी बिकता है।
1: जी सर व्यवहार सही है। 10-12 साल हो गया मेरे को दुकान किए हुए, दुकान पर ग्राहक आते हैं जाते हैं, तो आज हमको सुनवा दीजिए गाना,
0: कौन सा गाना?
1: तवायफ फिल्म का गाना है,
0: तवायफ फिल्में तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं।
1: बोल वाल्मीकि।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद, नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मोहल्ला सुलेमानगंज मगलपुरा से सुहेल अंजुम बात कर रहा हूँ, सासाराम से बोल रहा हूँ सर।
0: सुहेल अंजुम जी बोल रहे हैं सासाराम से, स्वागत है इस कार्यक्रम में। और
1: तो बताइए अपना हाल क्या सर।
0: हाँ यहाँ सब ठीक ठाक है, अपना बताइए।
1: हाँ सब कर्म है मालिक का, सब लोग अच्छे हैं।
0: समय आजकल क्या हो रहा है?
1: वही सर, पान दुकान है, मोहल्ले ही में चलती है, आप लोग की दुआ से ठीक चल रही है।
0: चलिए अच्छी बात है, और सब ऊपर वाले की दुआ है।
1: जी सर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज इस हमारे कार्यक्रम में?
1: जी सर, आज ये फिल्म सरोज खान की फिल्म मेला का सुना दिए सर।
0: मेला फिल्म का कौन सा गीत?
1: वो वाला लता मंगेशकर मोहम्मद की रफी की आवाज में। रुके है मिलन की साथी मेरे यारे, मोहे कहीं ले चल मोह के सारे, यही वाला सर।
0: ठीक है सुहेल भाई, आपकी बहुत ही अच्छी पसंद है, तो चलिए हम आपके लिए पेश कर रहे हैं मेला फिल्म का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: जी नमस्कार। जी
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर, मैं आपका नियमित श्रोता नलहन स्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा बोल रहा हूँ सर।
0: ललन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं। अभी
1: आपसे बात करके बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। मुझे
0: जी धन्यवाद।
1: एक गीत सुना दीजिए जो बहुत कम ही बजता है आपके केंद्र
0: हाँ,
1: से।
0: गीत तो हम सुनवा देंगे, लेकिन आजकल आपके यहाँ मौसम का क्या मिजाज है?
1: मौसम सर, एक तरह से मानसून का लगभग आगमन हो चुका है,
0: हाँ तो
1: लेकिन वो जम के बारिश कभी हो जाती है और फिर बारिश बंद, उमस से फिर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी भी बादल लगाए हुए हैं।
0: हाँ मिश्रा जी, ठीक है, बारिश मानसून तो सक्रिय हो चुका है। कौन सा गीत सुनवा दिया जाए?
1: सर हमको आज सुना दीजिए, फिल्म है धरती कहे पुकार के और लता जी की आवाज है, जारे कारे बदरा बलमा के पास, क्योंकि बादल के माध्यम से बिरहनी अपना संदेश भेज रही है, उसी पर
0: जी
1: आधारित यह गीत।
0: जी

0: हेलो मनपसंद।
1: हाँ नमस्कार सर,
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम चौसा से छठू लाल मौर्या बोल रहे हैं सर।
0: जी मौर्या जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्या करते हैं?
1: इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं,
0: काम करते हैं या दुकान है?
1: दो ही दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो दुकान ही ना
0: मन
1: है।
0: रिपेयरिंग का काम करते हैं या सामान
1: रिपेयरिंग का,
0: इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीवी रेडियो वगैरह?
1: हाँ टीवी रेडियो।
0: तो ठीक है छठूलाल जी, तो आपका ये फोन कॉल पहली बार लगा है?
1: आप फोन से पहली बार बात कर रहे हैं, वो दूसरे का मोबाइल है, हमारे अपने से कॉल पे नहीं लगा।
0: तो चलिए आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दुकानदारी के अलावा और कुछ काम करते हैं?
1: ना वही करते हैं,
0: तो चलिए अच्छी बात है। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अपनी भी जिंदगी में यही वाला गाना है,
0: किस फिल्म का है?
1: साजन का घर है,
0: साजन का घर फिल्म
1: जिंदगी में
0: का।
1: खुशियों का पलाएगा।
0: अच्छा छठूलाल जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही के पसंद पर ये गीत। श्रोताओं, इसी गाने के लिए हमारे एक और श्रोता ने फोन किया है, पहले सुनते हैं उनसे की गई बातचीत। हेलो मनपसंद। हाँ स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: आप लाल बहादुर जी बोल रहे हैं ना?
0: जी।
1: मैं जयराम बिंद चौसा गोला बक्सर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ स्वागत।

0: स्वागत है जयराम जी, क्या हालचाल है?
1: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। आपसे बात करते हुए बहुत हमें अच्छा लग रहा है।
0: चलिए धन्यवाद। आजकल क्या हो रहा है?
1: आजकल तो अभी बैठे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। खेती में सब फंसे हुए हैं, बारिश नहीं हो रहा है, खेत सब सूखे पड़े हैं।
0: अभी रोपनी शुरू नहीं हुई है?
1: अभी रोपनी शुरू नहीं हुआ है,
0: तो आपके इलाके में
1: पत्ते
0: नहर नहीं लगता है क्या?
1: नहर का व्यवस्था है लेकिन वो थोड़ा पानी कम दे रहा है। नहर
0: ओ, माने आपके खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है।
1: नहीं पहुंच पाता है। जिसके पास बोरिंग टेबल का व्यवस्था है वो अपना धीरे धीरे अपना काम चालू कर रखा है। हम लोग बैठे हैं, हम लोग अपने खुशियों का इंतजार में बैठे हैं।
0: कौन सा गाना सुनवा दिया जाए?
1: साजन फिल्म साजन का घर कोई भी गीत सुनवा दीजिए, बहुत हमें बेहतरीन लगेगा। खासकर तो अच्छा है, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वही गीत सुनवा दीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो खुशियों का पल आया नहीं है, बारिश हो जाएगा तो हमें खुशियों
0: आप
1: का पल आ
0: भरोसा
1: जाएगा।
0: रखिए, वो पल जरूर आएगा। और हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आप ही के पसंद पर ये गीत।

0: खास कर तो अच्छा है, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वही गीत सुनवा दीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो खुशियों का पल आया नहीं है, बारिश हो जाएगा तो हमें
1: आप
0: का पल
1: भरोसा
0: आ जाएगा।
1: रखिए, वो पल जरूर आएगा। और हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आप ही के पसंद पर ये गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो,
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे
1: हम
0: हैं?
1: जबला नौखा थाना जिला रोहतास बिहार से बोल रहे हैं। राम इकबाल शर्मा बलाइंड,
0: जी, राम इकबाल जी, क्या करते हैं?
1: हम बलाइंड हैं, कुछ नहीं करते हैं। पहले डॉक्टर थे, पेड़ लगाए हैं, 400 पेड़ लगाए हैं।
0: अच्छा, ब्लाइंड कब हुए हैं? पहले बोले कि पेड़ लगाए हैं,
1: हाँ, तो बलाइंड 2007 में हो गए हैं।
0: तो चलिए, जिंदगी तो कट ही रही है। अगर आपका
1: आप
0: सोच
1: सोचेंगे कोई संग पार हो जाए, सर कहा करें, अब तो बड़ी समस्या में पड़ गए हैं। जी
0: समस्या कुछ नहीं, दिल में हिम्मत रखिए, सब सबका दिन कट
1: जी आपका
0: जाएगा।
1: आशीर्वाद है सर, बड़ा
0: हाँ, और
1: खुश हैं हम।
0: क्या करते हैं?
1: भविष्य लगा रहे थे, ऐसे कुछ नहीं, सोए हुए हैं सर।
0: तो आज क्या सुनवा दिया जाए, कौन सा गाना?
1: ये सुना दीजिए कि चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला आसमान, इतना बदल गया इंसान।
0: किस फिल्म का गाना है?
1: और तो फिल्म हमको याद नहीं है, लेकिन बता दीजिए। दोस्तों का नाम ले लें सर। हर
0: हाँ, लीजिए शौक से। हाँ,
1: बबलू शाह, बच्चा खां, आए तो है सुगा बैठा।
0: अपने दोस्तों के साथ सुनिए ये गाना।

0: हेलो मनपसंद
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं विवेकर छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जांगड़े जी बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। क्या करते हैं योगेश जी?
1: हमारा मूल खेती बाड़ी का काम है भैया।
0: जी बहुत अच्छी बात है। हमारा देश भारत ही कृषि प्रधान देश है। किस चीज की खेती
1: जी
0: बाड़ी हो रही है आजकल?
1: अभी धान बोई किए हैं भैया, और कुछ कुछ बचा भी है।
0: अच्छा, लगभग रोपनी तो हर जगह शुरू हो गई है, खरीफ फसल है। बारिश का क्या हालचाल है, हो रही है आपके यहाँ?
1: कम है भैया, ना के बराबर।
0: ओ, ये हर जगह से यही सुनने को मिल रहा है कि बारिश कम हो रही है। तो और खेती बाड़ी के अलावा और कुछ करते हैं?
1: नहीं भैया, खेती बाड़ी में ही ज्यादातर समय निकल जाता है। काम
0: तब
1: तो नहीं
0: मनोरंजन
1: है,
0: का
1: क्योंकि खुद
0: साधन?
1: ही देखते हैं पिताजी के साथ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और मनोरंजन रेडियो से ही होता है?
1: बिल्कुल, रेडियो से है, बड़ा तो कोई साधन नहीं है। केवल मनोरंजन के वो
0: योगेश जी,
1: इस्तेमाल भी काफी होता है खेती बाड़ी में या किसी भी कार्य
0: रेडियो के
1: में।
0: खासियत ये भी है कि रेडियो आपके किसी भी काम में व्यवधान नहीं डालता। क्या सुनना चाहते हैं हमारे इस कार्य?
1: गाना आप हमें सुनवा देंगे, फिल्म सावन को आने दो का टाइटल।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग आपको ठीक है सुनवा देंगे। हमारे आकाशवाणी सासाराम के और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: मनपसंद सुनते हैं और संगीत संगीत सुनते हैं।
0: ओ, माने फिल्मी गाने वाला प्रोग्राम। तो ठीक है योगेश जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही के पसंद पर ये गीत।

इस गाने के साथ ही कार्यक्रम हेलो मनपसंद अब समाप्त होता है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शनिवार संध्या 7:50 पर। श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो मनपसंद के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं हर बुधवार दिन के 11 से 12 के बीच। करें ताकि हमारे दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिल सके। अब दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनपसंद। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कम्प्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन

0: व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
2: आज 15 जुलाई को यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
1: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
3: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
1: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
4: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21

0: जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगा।

मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय गायन पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुर सौरभ। शहनाई वादन अली अहमद हुसैन एवं सचिन, राग है गोरख।

इसी के साथ ही शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरभ अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

0: बैठे।
1: आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर

और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: के बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज़ में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप

0: लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज़ चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथे बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। हम

शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: तरंग।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैजू मंगेशकर की आवाज़ से। हसरत शाह हुसैन के बोल हैं और इस गीत का संगीत दिया है बैजू मंगेशकर ने, और एल्बम का नाम है विथ इन यू।

अभी आपने सुना भैजू मंगेशकर की आवाज़ में विथ इन यू एल्बम का ये गीत। हसरत शाह हुसैन के बोल थे और भैजू मंगेशकर का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए कैलाश खैर की आवाज़ में, यमुना प्रसाद देवीदास के बोल हैं, प्रशांत महा का संगीत है और एल्बम का नाम है देश पर जान लुटाएंगे।

कैलाश खैर की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम देश पर जान लुटाएंगे का ये गीत यमुना प्रसाद देवीदास के बोल थे और प्रशांत महाबल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मिलिंद गाबा की आवाज़ में, माफ़ कीजिएगा, मिलिंद गाबा और परंपरा ठाकुर की आवाज़ों में क्या करूं एल्बम का ये गीत, मिलिंद गाबा का बोल हैं

0: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अब लीजिए सुनिए तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज़ों में तेरे नाम एल्बम का ये गीत। गीतकार संगीतकार मनन भारद्वाज।

मोना वर्मा और जयवर्धन के गाए इसी गीत के साथ ही रसरंग कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ से। सावन कुमार के बोल हैं और उषा खन्ना का संगीत है और फिल्म का नाम है सौतन।

दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

0: अलग अलग फिल्म का ये गीत थे आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत था। और अब लीजिए मेरी जंग फिल्म का ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

इसी गीत के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:53 पर वंदे मातरम के साथ, और प्रातः 6:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम वंदनवार, श्री रामचरित मानस, संगीत सरिता और भूले विसरे गीत। प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे नमस्ते रोहतास। समाचार प्रभात के लिए हम चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र प्रातः 8:00 और 8:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम। आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी का प्रसारण समय होगा प्रातः 8:20 पर, और 8:45 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मलिका और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। पूर्वाह्न 10:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम श्रम संसार। स्वर मम संकलन होगा रवि भूषण साहू का। 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी और 10:45 समय होगा गैर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार का। 11:00 पूर्वाहन आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

शाम की सभा की शुरुआत होगी कार्यक्रम वंदन से और 5:30 पर आप सुनेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम और 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत और 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित

0: 6:10 पर आप सुनेंगे कृषि एवं भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी और 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण समय होगा 5:30 पर। कार्यक्रम ई मनपसंद ये आप सुनेंगे 7:50 पर और 8:45 सुनेंगे समाचार संध्या चित्रपट तराने कार्यक्रम 10:30 और 11:00 आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और सभा का समापन होगा हमेशा की ही तरह रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं ये था कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब दिल्ली से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय

0: मार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
1: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved 2 elevated corridor projects at